एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो चुके हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे वंदना।

भगवान के प्रति आस्था और विश्वास मनुष्य के मन के ऐसे दो भाव हैं जो किसी मनुष्य का उसका परमात्मा के साथ संबंध निर्धारित करते हैं।

ईश्वर पर हम तभी विश्वास करते हैं जब हमारा खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही रहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस। प्रस्तुति रहेगी श्री राजन साजन मिश्रा की।
1: एपिसोड नंबर 243।

पुत्र ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्य लोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

गीता संदेश कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 32-35 की व्याख्या। प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की।

लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे ए नगाड़ा आप सुनिएगा सुबह 7:40 पर। कार्यक्रम स्वरांजलि का आनंद लीजिएगा सुबह 9:30 पर।

गाने नए पुराने आप सुनेंगी शाम 5:05 पर। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें, इसे आप सुन पाएंगे रात्रि 10:00।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, इसका समय रहेगा शाम 5:30। किसान भाइयों के कार्यक्रम किसान वाणी को आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार आप सुनेंगे शाम 7:00।

कार्यक्रम आपकी बात, इसे आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का आप आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00।

गीतों और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम सुबह सवेरे, इसे आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

नमस्ते कुरुक्षेत्र, जो हमारा एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है, इसे आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिसमें जुड़ने के लिए हमारे केंद्र का टेलीफोन नंबर है 01744-221-322।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस संदेश के बाद आप सुनेंगे देशगान।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और उसके बाद हिंदी समाचार 7 बजे और 7:05 पर इंग्लिश न्यूज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पूर्ण रूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
2: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
2: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
2: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं। कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
2: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
2: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
2: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
2: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
0: जी।
2: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
2: जी,
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
2: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
2: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
2: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
2: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
2: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
3: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
4: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
3: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो, अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है। ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
2: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
9: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए,
10: हाँ
9: इंजेक्शन लगा दूँ?
10: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
11: सर सर ये टेलीग्राम।
10: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
11: क्या हुआ सर?
10: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
11: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
10: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
11: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
10: हाँ चार्ल्स।

0: जान पर काट लिया है, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
1: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
0: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
1: देखिए आप,
0: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
0: मेरा अच्छा, बेटा।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम बाजे ए नगाड़ा। प्रस्तुति रहेगी श्री राजबीर की। उससे पहले सुनिएगा ये संदेश।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मैं हट जा अलगी तेरे त डर के मत भरमावे मने मनी भर के मत भरमा।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके बाद मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और उसके बाद आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the importance.
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की

0: दूर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: 21 जून से 31 ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. We have a report.
10: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement, BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides are proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
8: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, "Today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of poor, farmers, women and youth." Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the empowerment of women.
11: Over the past 12 years, women empowerment in India has witnessed a transformative shift driven by sustained government efforts to enhance access to healthcare, education, livelihood opportunities, financial inclusion and leadership roles. The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has enabled millions of women to access collateral-free loans to start and expand their businesses. Under the scheme, loans worth more than 40 lakh crore rupees had been disbursed to beneficiaries by March this year. Of them, around 17 lakh crore rupees were given to women. Talking to Akashwani News, Vanisri from Tirupur, Tamil Nadu said that the scheme has motivated her to become entrepreneurs.
12: With the help of this scheme, I started my dream career and opened my new business as a small boutique shop, and I'm really proud to say it's running successfully. Now I'm capable to start 2 to 3 branches also and also give more franchises also. Only with the help of this PM Mudra scheme, it motivates me to become an entrepreneur in a larger level.
11: The flagship schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Sukanya Samridhi Yojana and Vimania Initiative have collectively strengthened women's access to banking, savings and entrepreneurial platforms. Under the Jan Dhan Yojana, a total of over 58 crore accounts have been opened till date, and out of these, around 33 crore Jan Dhan accounts belong to women. Talking to Akashwani News, a resident of Shimla in Himachal Pradesh, Saroj Bala said that after opening the Jan Dhan account, the full benefits of government schemes are now directly credited to her bank account.
4: Modi ji ke 12 varsh ka karyakal bahut acha hai. Unhone aam janmanas ko bahut suvidhaen di hain, jiska Jan Dhan khate se bhi sambandh hai. उसने एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है उसके, उसने छोटी छोटी सुविधाएं, हमें छोटा सा ऋण भी मिलता है, हमें 10,000 रुपए का, जो बिना किसी गारंटी के देती है सरकार हमें.
11: Another key initiative is the Lakhpati Didi program, which focuses on helping women to achieve sustainable annual incomes of at least 1 lakh rupees. The Beti Bachao Beti Padhao scheme has contributed to improving the national sex ratio at birth from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25. With sustained policy support and innovative programs, women are playing a pivotal role in shaping a self-reliant and inclusive economy. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been opened to tourists. The Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. Valley of Flowers is currently home to more than 300 species of flowers and several rare varieties of flora. Forest Range Officer Chetna Kandpal said that the valley will remain open until October the 31st.
5: Valley 1st June se 31st of October.
13: The valley is open from 1st of June to 31st of October. The valley was discovered by Frank Smythe in 1931.

सुबह सवेरे सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त दीपा पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपने देखा भी होगा कि पेड़ कभी भी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, बल्कि पेड़ हमेशा उसकी जड़ काटने से ही सूखता है। ठीक वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। तो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत करते रहिए, देखना उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा।

श्रोताओं, मनोरंजन के साथ साथ अब समय है आपसे जुड़ने का, आपसे पूछने का हमारा आज का प्रश्न। तो आज आपको बताना है, कौन सा भारतीय राज्य एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, जिसका उत्तर आपको देना है SMS के द्वारा हमारे मोबाइल नंबर 9466021336 पर। समय रहेगा 8:45। तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 90 वर्षों से हवाओं में गूंजती यह आवाज सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हर भारतीय की धड़कन है, क्योंकि आकाशवाणी कल भी विश्वसनीय थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आकाशवाणी के इतिहास की बात करें तो 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था, और इस साल 2026 में हमारी यह संस्था अपने अस्तित्व के 90 वर्ष पूरे कर रही है। हम आपको बता दें कि रेडियो को आकाशवाणी नाम प्रसिद्ध कवि और विद्वान MV गोपाल स्वामी ने दिया था, जिसे बाद में 1957 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। आकाशवाणी का अर्थ है आकाश से आने वाली वाणी, यानी आवाज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सभी के हित के लिए और सभी के सुख के लिए, जो दर्शाता है आकाशवाणी के सेवा भावना को। चर्चा आगे भी इस बारे में जारी रहेगी, तब तक आनंद लीजिएगा इस गीत का।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी की, आकाशवाणी के इतिहास, इसके 90 वर्षों के सफर की। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नियति से साक्षात्कार वाला अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, तो उसे आकाशवाणी के माध्यम से ही पूरे देश ने सुना था। आज़ादी के संघर्ष से लेकर आज तक यह देश की हर बड़ी घटना का साक्षी रहा है। आकाशवाणी दुनिया की सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। यह 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिससे यह भारत के सुदूर गांवों तक पहुंचने वाला सबसे सशक्त माध्यम बनता है। आकाशवाणी ने भारत के शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों और साहित्य को संरक्षित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा टीवी और सोशल मीडिया के दौर में भी सूचना की सत्यता के लिए आज भी लोग आकाशवाणी के समाचारों और इनके खबरों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। संकट के समय जैसे बाढ़, युद्ध या महामारी में यह संचार का सबसे सुरक्षित माध्यम साबित हुआ है, और आज भी 90 साल की उम्र में आकाशवाणी जवान है। आज यह न्यूज़ ऑन AIR ऐप, डिजिटल स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के श्रोताओं तक डिजिटल रूप में पहुंच रहा है, क्योंकि आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि यह हर भारतीय की धड़कन है। आकाशवाणी कल भी विश्वसनीय थी, आज भी है और कल भी रहेगी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हमने पूछा था आपसे हमारा आज का प्रश्न। आज आपको बताना था कि कौन सा भारतीय राज्य एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है, जिसका सही उत्तर है ओडिशा। और हमारे आज के इस प्रश्न के उत्तर देने वालों की श्रोताओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम है नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर, रीमा ठाकुर। अगले हमारे श्रोता हैं योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। आप हैं मधु आयाम, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, आप हैं छत्तीसगढ़ से। अगले हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा। कुरुक्षेत्र से आप हैं गौतम। अगले हमारे श्रोता है पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। छत्तीसगढ़ से ही हमारे श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस। उत्तर प्रदेश से हमारे प्रश्न का सही उत्तर दिया है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया ने।

हमारे आज के प्रश्न का उत्तर देने वालों में आप हैं हिसार से सज्जन जांगड़ा, कार्तिक व वेदांश जांगड़ा। बिहार से आप हैं डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह, सोनम वली बेलदार। उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम। अगले हमारे श्रोता हैं माघीराम सैनी, पूनम सैनी, आप हैं कुरुक्षेत्र से। छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा। मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं नेहा जैन, विनोद मूणत, दीपक। महाराष्ट्र से आप हैं राहुल मनवर, सरला, बेबी प्रियांशी। महाराष्ट्र से ही हमारे अगले श्रोता हैं विजय, रतनमाला, कुमकुम। छत्तीसगढ़ से आप हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी। हांसी से आप हैं रामधारी अवाना, अनाया, ओजस अवाना। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमारे श्रोता हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, खुशी गोस्वामी। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा। उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं भुवन प्रकाश गौतम, श्रेय गौतम। बेंगलोर से आप हैं एन आर प्रसाद, अखिला प्रसाद।

राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, पूजा परिहार। मारहरा दरवाजा एटा से आप हैं नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी। छत्तीसगढ़ से आप हैं कोमल सेन तोषण सेन, माफ कीजिएगा, कोमल सेन तोषण सेन, विनायक सेन। छत्तीसगढ़ से ही आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, बेबी बॉय हिमाक्ष। छत्तीसगढ़ से आप हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हेयांश कुमार चंदन। लाडवा से आप हैं चांद ढिंगड़ा, ईशु एमी। छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं पवन क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू। अगले हमारे श्रोता हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा। आप हैं सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत।

हमारे प्रश्न का उत्तर देने वालों में हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे, छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तम कुमार बघेल रुखमनी साहिल, गुजरात से आप हैं सरोज नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं सुमन गौरव शर्मा सौरव शर्मा, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से आप हैं राकेश सैनी सरोज सैनी यादवेंद्र सैनी, वडिंगखेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू टोमस पिंकी लवली, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार साहू, बागपत से आप हैं संजय नमन, संतोष नामदेव आप हैं बघेरा दुर्ग से, श्रोताओं की लिस्ट अभी और भी जारी है लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद कालीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातमा गाजी। आप हैं

हमारे आज के प्रश्न का उत्तर देने वालों में आप हैं जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, सोनू भाटिया, एंजल भाटिया, अमीर खुसरो रोड गंजुंडवारा से आप हैं डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार, शेख मोहम्मद कालीम, रावर करनाल से आप हैं ज्ञानभूषण शर्मा, शास्त्री नगर बीड शहर से आप हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, विशाल सपकाल, महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं नंद किशोर घटे, संगीता, अंजलि, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहन, आप हैं उत्तराखंड से, दिल्ली से हमारे श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से आप हैं वीना ढिंगड़ा, कृतिका, विशु और विजय, रादौर से हमारे श्रोता हैं राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, साहिल पुजारा, गुजरात गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण, सोनी, जगदीश जोहरी और लड्डू कुमारी,

महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं शंकरलाल जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। आप हैं गिरा पलारी से वीरेंद्र शाहू। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से आप हैं अंगराज संदीप दत्ता बंसी। हरियाणा से आप हैं दारा पंडित। उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं सोनी सैफी, सद्दाम सैफी, असलम सैफी। बिहार से आप हैं फैसल इमाम। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। भारत राम पडोटी, जयंती पडोटी, हेमंत पडोटी, आप हैं कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से। छत्तीसगढ़ से आप हैं सोनकली साहू, श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू। बिहार से आप हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन। हरियाणा से हमारे श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी। आप अंबाला से हैं हरियाणा। मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं भैरूलाल, भोला, उन्हेल। भीमखोज तरपोंगी से आप हैं संतोष गुप्ता, हितेश गुप्ता। बेंगलोर से हमारे श्रोता हैं सुधा। छत्तीसगढ़ से आप हैं कीर्ति कुमार, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निशांत ध्रुव।

छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, राहुल साहू। छत्तीसगढ़ से ही आप हैं वैभवी साहू, विभूति साहू। पटियाला से हमारे श्रोता हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से आप हैं तुलसी मस्कीन। सौराष्ट्र राजकोट से आप हैं प्रवीण भाई गुजराती, जगदीश भाई और हिरेन भाई। मुरादगढ़ से आप हैं रमेश कुमार कंबोज, भुवेश कुमार कंबोज और वंश। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं पवन गौड़, सुयश, आशीष। नेहरू चौक पेठन से आप हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव। रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र।

अगले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन। आप हैं बुलंदशहर से, ओडिशा राज्य से आप हैं कृष्ण। अगले हमारे श्रोता हैं कमला देवी गुप्ता, कृष्ण कुमार गुप्ता। आप हैं उत्तर प्रदेश से। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, हैप्पी राय। झारखंड से आप हैं एसएम जावेद। करनाल से आप हैं किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, सरबजीत बुम्बक। करनाल से आप हैं रजनीश बत्रा कबीर। अगले हमारे श्रोता हैं मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, मोहिनी ऋतिक। हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है जगाधरी से विनय मोहन ने। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, नीमित दिशानी। हमारे प्रश्न का उत्तर देने वालों में आप हैं यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव। अगले हमारे श्रोता हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े।

मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी। उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं राजकुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक। हमारे प्रश्न का उत्तर देने वालों में आप हैं उत्तर प्रदेश से ही अनुपमा, कुसुमलता, अपूर्वा। कुरुक्षेत्र से आप हैं सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी। राजस्थान से आप हैं रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनने के लिए और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देकर हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आकाशवाणी परिवार करता है धन्यवाद। और आपको सुनाता है कार्यक्रम का यह गीत।

श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी का मौसम जिस तरह इंसानों को परेशान करता है, बेजुबान पशु पक्षी भी इससे बेहद परेशान रहते हैं। तो हमारे ज़रूरी है कि हम इतना सा काम करें कि अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक बर्तन जरूर रखें, ताकि ज़रूरतमंद जो पशु पक्षी हैं वो आकर अपनी प्यास बुझा सकें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जिसे हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

1993 में निर्मित थिरुडा थिरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

हालांकि मणिरत्नम ने अपनी सभी फिल्में दिल से ही बनाई हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो वही हिट होती है जो पब्लिक के दिल को भा जाए।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी नहीं।

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज की फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त दीपा पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो है एक सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप हमारे केंद्र के नंबर पर कॉल करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमें अपनी पसंद का गीत बताते हैं, फिल्म का नाम बताते हैं और हम आपकी पूरी करते हैं ख्वाहिश। आप मिलाते हैं हमारे केंद्र का नंबर 01744221322। तो जल्दी से मिलाइए कॉल, हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी। हाँ, आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में। कौन से श्रोता जुड़े हमारे साथ?
1: हाँ जी, मैं कमल बोल रहा हूँ मैम, ट्रैक्टर चला से।
0: कमल जी, आपका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: मैम वो दोस्तों की समाई जय काली कलकत्ते वाली वाला गाना
0: सुनिए। हेलो
1: हेलो, जय काली कलकत्ते वाली।
0: आपने इससे पहले मूवी का नाम बताया था, थ्री इडियट्स।
1: मैंने कहा था कि तो चल रहा है कि फिर ये वाला गाना सुनना है, तो मैं जैसे ये वाला गाना सुना दूँगा।
0: चलिए अभी हम आपकी पहली पसंद को पूरा करते हैं।
1: ठीक है जी,
0: कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद जी।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नमस्ते सर।
2: हाँ नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हमारे साथ?
3: उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार जुड़ा हूँ आपके साथ।
2: गुलजार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा केस सुनना चाहेंगे आज आप?
3: जी नहीं, फिल्म का नाम तो रहेगा नदिया का पार।
2: जी जी,
3: हर गीत का बोल रहे हैं जब तक पूरे ना हो तेरे साथ।
2: जरूर, आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे।
3: दीदी जी, मैं तेरे नाम जानना चाहूंगा।
2: बताइए।
3: मैं राज मलिक, सानाज मलिक, सानिया मलिक
2: जी।
3: आप सभी मित्र है मेरे और ये आकाशवाणी ग्रुप क्षेत्र की पूरी टीम है
2: जी। आपके साथ साथ आपके सभी मित्रों का, आकाशवाणी परिवार की पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम।
3: और दीदी जी, आप भी हो हमारे साथ।
2: जी जरूर, आप हैं, हम हैं, हम सब मिलकर एक हैं और कार्यक्रम को इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे आपके साथ मिलकर।
3: और दीदी जी, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा आपसे।
2: जी बोलिए।
3: और ये जो कार्यक्रम है ना नमस्ते कुरुक्षेत्र, मैं ये तो यही कहना चाहता हूँ ना, इसमें जो है हमारा कार्यक्रम रोजाना शामिल हो जाए, हम रोजाना फोन कर जाए, ऐसा हो जाए, ये कहना चाहता हूँ।
2: आपकी इस बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन श्रोता बहुत सारे हैं, अगर एक श्रोता का कॉल बार बार होगा अटेंड तो मुश्किल रहेगा बाकी श्रोताओं का जुड़ने के लिए।
3: और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि 15 की बजाय 10 दिन का गैप हो जाए।
2: चलिए, आपकी रिक्वेस्ट को हम नोट कर लेते हैं, जैसा भी होगा आपको सूचना मिल जाएगी।
3: जी थैंक यू मैम,
2: धन्यवाद। आपके गीत को हम सुनाते हैं आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी।
3: थैंक यू मैम।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: टेलीलॉग ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हमारे साथ?
2: मैं धुंधला से रविंद्र कक्कड़।
1: रविंद्र कक्कड़ जी, आपका हम कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में स्वागत करते हैं।
2: हाँ जी,
1: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
2: जुदाई फिल्म का गीत, मार गए थे जुदाई।
1: जरूर, हम आपकी पसंद को पूरा करेंगे। क्या काम करते हैं रविंद्र जी आप?
2: खेतीबाड़ी करते हैं जी।
1: खेतीबाड़ी, तो अभी मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है खेतीबाड़ी में?
2: मौसम तो ठीक है जी।
1: तो आपको जैसे खेतीबाड़ी करते समय आप कुछ सावधानियों का ध्यान रखते होंगे, गर्मी का मौसम है, लू चलती है।
2: हाँ जी।
1: तो अपने साथ आप पानी की व्यवस्था, खाने पानी की रखते
2: हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है
1: जी, अच्छे से हो जाता है। तो रेडियो को आप पसंद करते हैं, आप रेडियो कितना सुनते हैं?
2: रेडियो सारा दिन सुनता हूँ।
1: अच्छा, खेतीबाड़ी के दौरान आप सारा दिन रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं?
2: कोई बात नहीं आती।
1: अच्छा, अच्छा लगता है आपको रेडियो सुनकर?
2: जी सर।
1: चलिए, आपकी पसंद को पूरा करते हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित माँ भद्रकाली शक्तिपीठ की, जो हमारे देश के पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। पुरानी मान्यताओं की बात करें तो यहाँ माता सती का दाहिना टखना यानी घुटने के नीचे का भाग आकर गिरा था। इसके अलावा आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन भी भद्रकाली शक्तिपीठ में ही हुआ था। और हाँ, ये भी माना जाता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण पांडवों के साथ इस मंदिर में आए थे। उन्होंने युद्ध में विजय के लिए माँ से मन्नत मांगी थी और युद्ध में विजय हासिल करने के बाद पांडवों ने मंदिर में आकर घोड़े दान किए थे और तभी से मंदिर में घोड़े दान की प्रथा चली आ रही है, जिसमें भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने चांदी या मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। इसके अलावा श्रोता, जो हमारे भक्तगण है, रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालु अपनी रक्षा का भार माता को सौंपकर यहां विशेष रूप से रक्षा सूत्र बांधते हैं। श्रोताओं, कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर माँ देवी काली को समर्पित है। भद्रकाली शक्तिपीठ सावित्री पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। भद्रकाली मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है तथा मंदिर के प्रवेश करते ही बड़ा कमल का फूल बनाया गया है, जिसमें माँ सती के दाएं पैर

0: तखना स्थापित है जो कि सफेद संगमरमर से बना है। तो जो श्रोता श्रद्धालु हमारे मंदिर में माता रानी के मंदिर में आ चुके हैं उन्होंने मंदिर की खूबसूरती का अनुभव किया ही होगा। तो चलिए अपने अगले श्रोता को हम लाइन पर लेते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं हमसे कार्यक्रम
1: नमस्ते कुरुक्षेत्र में? मैं रेलवे रोड से बोल रहा हूँ।
0: शिवम जी आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
1: हाँ
0: जी, सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही
0: है जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: मैम राजन को पहले रखना दीजिए।
0: जरूर, आपकी पसंद को हम पूरा करेंगे।
1: मैम मैं दोस्तों के नाम ले लूँ क्या?
0: जरूर।
1: हाँ जी मैम, मेरे दोस्त हैं रजत, गुरचरण, अशोक
0: जी। आपके साथ साथ शिवम जी हम आपके दोस्तों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं?
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम संदीप शर्मा है जी, अम्बाला से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी संदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बताइए गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
1: मैम राम तेरी गंगा मैली का, एक राधा एक लीला।
0: जरूर, आपकी पसंद को हम पूरा करेंगे। तो क्या काम करते हैं संदीप जी आप?
1: मैम मेरा क्लास फोर का काम है, जो लेबोरेटरी क्लास फोर में मिलता है ना।
0: दोबारा बोलिए।
1: लेबोरेटरी क्लास फोर का काम है
0: जी। अच्छा, अच्छी बात है। तो
1: पहले भी कॉल किया मैंने दो तीन बार।
0: चलिए, आप हमारे और कार्यक्रम भी सुनते हैं
1: जी मैम?
0: तो सबसे बेहतरीन कार्यक्रम आपको कौन से लगते हैं?
1: मैम सबसे बेहतरीन तो आपका यही लगता है जी, आपका फरमाइश
0: जी, जिसमें आप अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हैं।
1: हम आपकी आवाज कम आ रही
0: है। चलिए गीत, आपका एक गीत हम चलाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद
1: जी मैम, थैंक यू।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चिलचिलाती लू भरी भीषण गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि बीजवान पशु पक्षियों को भी बेहद परेशान करती है। पानी के अभाव में प्यास से ना जाने कितने ही पशु पक्षी मर जाते हैं, तो इस गर्मी के मौसम में हमारी छोटी सी पहल इन बेजुबानों की रक्षा कर सकती है। करना सिर्फ इतना सा है, अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक बर्तन जरूर रखें। हो सके तो पक्षियों के लिए गेहूं, चावल, बाजरा या ज्वार जैसे अनाज छतों पर डालें। पालतू पशुओं को दिन में कम से कम 3-4 बार साफ पानी पिलाएं। हो सके तो 2 बार अवश्य नहलाएं उन्हें। और अगर किसी पशु में हीट स्ट्रोक यानी लू के लक्षण दिखाई दे, जैसे पशु हांफने लगे, तेजी से सांस ले, लार गिराए या कमजोर दिखे, तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता इन बातों का जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए अगले श्रोता को हमारे लाइन पर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार जी, कौन सी श्रोता जुड़े हमारे साथ?
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं सीमा बोल रही हूँ, सुन रही थी।
0: सीमा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप कैसे मैम?
0: बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप लोगों से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे महसूस करते हैं।
1: सीमा जी, बहुत प्यारी मैडम जी आपकी।
0: सीमा जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज आप?
1: जीत फिल्म से।
0: जीत फिल्म का?
1: हाँ जी
0: जरूर, आपका पसंद
1: करेंगे।
0: आपकी पसंद को पूरा करेंगे। अब आवाज आ रही है मेरी?
1: हाँ जी आ रही है।
0: ठीक है, चलिए आपकी पसंद का गीत आपको सुनाते। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं आप?
1: जी, नमस्कार
0: हाँ नमस्कार
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी। कौन से श्रोता जुड़े हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी धन्यवाद आपका।
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: आज मुझे गाना सुनना है। सबसे पहले तो आपके आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की पूरे टीम को, पूरी सभी को हम एक श्रद्धांजलि देना चाहते हो। हमारे बीच जो है सुमन कल्याण को हमारे बीच नहीं रही, तो उस उनको सशक्त नमन है। तो उनको नमन का तो एक गाना सुनना है, ब्रह्मचारी मूवी का, आजकल तेरे मेरे प्यार के जमान पर।
0: जरूर, हम आपके ये गीत अवश्य चलाएंगे।
1: जी।
0: चलिए, शिमला में कैसा मौसम हो रहा है?
1: अभी आज तो साफ है, पहले तो लगातार बारिश हो रही थी, 28-22 से 1 सेकंड तक लगातार
0: बारिश।
1: आज जो है मौसम साफ है और थोड़ी बादल भी अभी छाए हुए और धूप भी है, और मतलब लगातार जो है बारिश हो रही थी हमारे इधर।
0: चलिए, अच्छा वहाँ बारिश हो रही थी।
1: जी,
0: अच्छी बात है। तो आज मौसम, आपने बताया कि आज मौसम ठीक है?
1: आज ठीक है,
0: क्योंकि लगातार बारिश थी तो इसलिए आज आपको मौसम ठीक लग रहा है। क्योंकि इस एरिया में, हाँ हमारे एरिया में लगातार धूप थी, तो जब बारिश आई तो हमें बहुत अच्छा लगा।
1: जी।
0: हाँ चलिए, अच्छी बात है। हम आपकी पसंद का गीत चलाते।
1: जी बिल्कुल, बता दिया
0: जरूर।
1: धन्यवाद।

इसी गीत के साथ अपने रेडियो दोस्त दीपा पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्ते कुरुक्षेत्र को यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।

बदन

बरसात की रात, इस फिल्म से एक अवाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रोग्राम रंग तरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में। ये गीत उन्हीं के एल्बम से अक्स एल्बम का नाम था, उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइंस, इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और ए आर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्याय

0: एनए के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में। ये आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। लीजिए सुनिए चरस फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिल ने कहा। इस फिल्म से ये गीत भी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

फिल्म लव स्टोरी से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में ये गीत। आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में पारस मनी फिल्म का नाम था, असद भोपाली ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है, जैसे कि हमेशा पहुंचती है। और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में उखिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था, जिसमें मौसम ने तेरा जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी, जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी, सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खेत की माटी को बचाने के लिए कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग न करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के तहत योजनाओं को मिशन मोड में लागू करें, ताकि हरियाणा के शहर स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता वाले बन सकें। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के शहर स्वच्छता और शहरी

0: प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रबंधन प्रदर्शन करते हैं तो वे देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनेंगे। केंद्रीय मंत्री कल शहरी स्थानीय निकाय विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनों की सफाई, शौचालय अवसंरचना, घर घर कचरा संग्रहण एवं पृथककरण, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, लिगेसी वेस्ट प्रबंधन, बहुमंजिला पार्किंग और बायो सीएनजी संयंत्र सहित विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए गए, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के सरकारी बहु विशेषज्ञता अस्पताल के रक्त बैंक में आज प्रातःकाल आग लग गई। आग सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा देखी गई, जिन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया। सुरक्षा कर्मियों ने बिना विलंब प्रतिक्रिया देते हुए आग पर काबू पा लिया। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रक्त बैंक की आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रारंभिक आकलन के अनुसार आग लगने का संभावित कारण एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे में किसी के हताहत होने या झुलसने की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन के अनुसार रक्त भंडार, उपकरण, अभिलेख या ढांचे को भी कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: आन मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफ़ी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता हम तक लिख देते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफ़ी डिटेल्स हमें मिली है। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली हूँ? नहीं, मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहा लें। आज कही हुई पड़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सब वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है, ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और ख्वाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो, वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सजकर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है, और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। नीरज ने इसे लिखा था, एसडी वर्मन की तर्ज थी। और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश की बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है। चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी नाचने के मूड में है। बहुत से फूल जगह जगह खिलने लगे हैं। बिरह मिलन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ बिल्कुल। और एक और साथी कहते हैं, शुभ दोपहर, आज बहुत दिनों के बाद ये हमसे जुड़ रहे हैं और पहली बार मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मैं अगर सुरीला सफ़र में हूँ तो ये फर्स्ट टाइम इनका जुड़ाव है इस प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक और साथी हमारे कहते हैं कि जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिला, ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में जब भी खुशियाँ आती है तो जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है और हर चीज़ नई लगने लगती है। एक पुरानी तस्वीर में वो पल ठहरा हुआ है जहाँ यादों के अनगिनत रंग बिखरे हैं। ये बात याद दिलाती है कि वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिल में और आंखों में ताज़ा रहती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी ज़रूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत ज़रूरी है और हमें ये अक्सर करना चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज़ पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, ज़माने में गुलमोहर की छाँव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखें। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में और गुलजार ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबकी आवाज़ें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू, और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे यह कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज़ करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फूलों के बाज़ार का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाज़ार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

फिल्म ना खुदा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे और लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाजों में अभिनेता अभिनेत्री आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, स्वरूप संपत और राज किरण पर फिल्माया गीत। फूलों की बात की कि फूलों को देने के लिए, गिफ्ट देने के अलावा और क्या करते हैं, तो हमारे साथी लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फूल गिफ्ट करता है, देता है, तो वो अपनी किताबों में छुपा कर रख लेती हैं, फिर सोचती हैं कि इस बार जब भी कोई देगा तो उसे अपने बगीचे में लगा देंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि गुलाब के फूलों की हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी हमारे अजमेर जिले के पुष्कर में होती है, जो कि तीर्थ स्थल भी है, और फूलों का उपयोग यहाँ पूजा के साथ साथ गुलाब का इत्र और गुलाब का गुलकंद बनाने में भी किया जाता है। हमारे घर के गार्डन में भी गुलाब के पौधे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है, हमें ये नहीं पता था। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सबसे अच्छा फूल तो गोभी का फूल होता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसकी सब्जी बना ली जाए। जी हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पारिजात, हर सिंगार, शिफालिका या प्राजक्ता, ये एक ऐसा फूल है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बड़ा पवित्र पुष्प माना जाता है, और आयुर्वेद में भी इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण हैं और धार्मिक और पौराणिक महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है और महाभारत काल में भी उस वक्त की भी कोई चर्चा की है यहाँ पर, उसका कुछ बताया है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम और मैसेजेस पर जाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो नागपुर में रहते हैं और नवरात्रि गणेश जी के आगमन के समय हर त्योहार को फूलों की मंडी में जाकर हर प्रकार के फूल खरीद कर लाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि पारिजात पुष्प को देवलोक का पुष्प माना जाता है, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं बहुत ही प्यारी लाइन कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, ये कविता की एक लाइन है जो बचपन में याद की थी और आज भी याद है, और सभी फूल बहुत सुंदर लगते हैं इन्हें। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके आसपास फूलों का बाजार तो नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी शिक्षक हैं और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बागवानी भी सिखाते हैं, जिसमें फूलों के बारे में बताते हैं और हर दिन माँ सरस्वती की तस्वीर को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मिडिल

कि आंगन में महकती मधुमालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहाँ पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में हैं। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा है हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं या जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की, फूलों में मिली जूही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताज़ा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल, जिसके आगे संसार के सारे फूल फेल है, कपास के फूलों से रुई और खाद कपड़ा बनता है, जो इंसानों के शरीर ढकने का काम करता है। जी हाँ, वो भी एक तरह का फूल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए। साथ ही गुलकंद के अलावा और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उपयोग सामने दिख रहा है आपके संदेशों में। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि और किस तरह से इन फूलों का उपयोग किया जाता है या आप किस तरह से करते हैं, ज़रूर मुझे लिखिए है।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है, सिलसिला फिल्म से ये गीत सुनवाया गया आपको लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में, शिव हरी का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज़्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि इनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफ़ी टाइम इनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक।

भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिवजी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं इन्होंने अपनी बगिया में, और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफी पसंद है। हमारी एक साथी लिखती है कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज़ कर सके। पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरोताज़ा रह पाए जब तक रह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज़ कर सकें। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ का टूर किया था, और वहाँ पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की, और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फ़ोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है हॉलैंड का, यहाँ पर एक साथी ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे फूल भी खिलते हैं जिनके बारे में अगर आप सुने तो ताजुब करेंगे। कैक्टस के भी फूल खिलते हैं और ये फूल साल में एक बार रात को 12 बजे के करीब खिलते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए, और उस पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि कैक्टस के फूल तुम दिन में खिले होते। जी हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है और आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, सचमुच ताजुब है। इसके अलावा गुलाब के फूल केवल सुंदरता के लिए नहीं होते हैं, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, विटामिन सी भी मौजूद होता है, उसका टोनर भी बनाया जा सकता है और होंठ भी गुलाबी होते हैं उसे पीसकर लगाने से, साथ ही उसकी चाय भी बना सकते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। उसके अलावा गुलाब जल के रूप में भी प्रयोग होता है, और भी बहुत सारे फूल हैं जिनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आज मुझ तक पहुंचे। चलिए हम पहुंचते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the Enforcement Directorate, investigations have uncovered a highly organized transnational criminal network. The network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing methadrone, also known as MD. It allegedly transported and distributed narcotic drugs across states and trafficked narcotic substances internationally. The probe has also revealed the use of hawala channels to collect and layer proceeds of crime. The government extradited Salim Dola last month from Turkey. He is a close aide of Dawood and operated a transnational network of drugs. The Directorate of Revenue Intelligence has busted a gold smuggling syndicate at Mumbai International Airport and seized 2.6 kilograms of foreign origin gold valued at around 4 crore 20 lakh rupees. Based on specific intelligence, DRI officials yesterday apprehended two passengers while they were attempting to smuggle gold into India from Dubai. During examination, officials recovered two pouches containing gold dust in wax form. The agency said the investigation led to a Navi Mumbai-based jeweler who is suspected to have conspired with accomplices to smuggle the gold into the country. Congress leader Shanimol Usman has been elected as the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in Kerala. Shanimol Usman got 99 votes and opposition candidate Mohammad Mohsin got 34 votes. All the three BJP members abstained from voting. The President, Vice President and Prime Minister have extended greetings to the people of Telangana on its Statehood Day. President Draupadi Murmu said Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hard-working people. She said the state has made significant strides in innovation and development over the years. Vice President C.P. Radhakrishnan said, blessed with rich cultural heritage and vibrant traditions, Telangana has contributed significantly to the nation's progress. Prime Minister Narendra Modi reaffirmed the central government's commitment to providing full cooperation to the development movement of Telangana in the direction of realizing the dream of a developed India. He prayed for good health, happiness and success for the people of Telangana. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today extended greetings to Italy on the occasion of its National Day. In a social media post, Dr. Jayashankar expressed confidence that the special strategic partnership between the two countries will continue to grow from strength to strength. In West Asia, attention remains focused on Lebanon after a fragile U.S.-brokered arrangement between Israel and Hezbollah raised hopes of easing tensions in the region, though fresh violations have cast doubt over its durability. Lebanese officials say Hezbollah has accepted a U.S. proposal under which the group would halt attacks on Israel, while Israel would suspend strikes on Beirut's southern suburbs, a Hezbollah stronghold. However, the understanding falls short of a comprehensive ceasefire and clashes have continued in parts of southern Lebanon. U.S. President Donald Trump has described the development as an agreement to stop all shooting following talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and contacts with Hezbollah through mediators. However, Israeli officials have taken a more cautious position, saying military operations could resume if Hezbollah attacks persist. Soon after the announcement, the Israeli military reported intercepting projectiles fired from Lebanese territory, highlighting the fragility of the arrangement. More from our Dubai correspondent.
1: The fragile Lebanon de-escalation is unfolding against a far more dangerous diplomatic backdrop. Iran has formally suspended all dialogue and exchange of messages through mediators with the United States, citing Israeli operations in Lebanon, which Tehran had flagged as a precondition of any ceasefire agreement. Iranian sources linked to the resistance front have placed on their agenda the complete closure of the Strait of Hormuz and the activation of additional fronts, including the Bab el-Mandeb Strait at the mouth of the Red Sea, with the stated aim of punishing Israel and its supporters. The fighting in Lebanon presents a major obstacle in the emerging deal between Washington and Tehran, as Iran is insisting that any agreement must include a ceasefire in Lebanon. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: A delegation of Nepal's ruling Rashtriya Swatantra Party, led by party president Rabi Lamichhane, met BJP President Nitin Naveen in New Delhi today. The delegation was also scheduled to meet other senior leaders of the party. The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices democratic processes, and people-centric political outreach. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day, while heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-yok. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Vishal Sharma. मुख्य समाचार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई राजस्थान गुजरात पश्चिमी मध्य प्रदेश ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है ये लोगों को आत्मनिर्भर जागरूक और सक्षम बनाती है आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें
3: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है
2: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
3: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
3: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
2: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
8: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
9: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
8: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
10: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
8: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
10: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
8: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
11: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनेंगे। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है। 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: जी हाँ साथियों, आज 3 बजे स्पेशल सखी सहेली। जी हाँ, आपके चहेते कार्यक्रम सखी सहेली की वर्षगांठ पर आज मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी हमारे विविध भारती परिसर में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आज ये दिलचस्प बातचीत हिमानी शिवपुरी जी के साथ रेडियो सखी ममता सिंह की आप सुनेंगे। साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमारे फेसबुक पेज पर सखी सहेली के पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, हम उन्हें जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और 3 बजे ये विशेष कार्यक्रम जरूर सुनिए। ये फेसबुक लाइव भी होगा।

420 फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, ओपी नैयर का संगीत था। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

और ये है सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना, और थोड़ी ही देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा, और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोता, और चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खासतौर से विविध भारती से?
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक
1: जी, में जी, समाचार वाचक,
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था। बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
2: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब। तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्नंग था। और बचपन क्या, आजकल जब
1: बहुत सारे चैनल्स हैं,
2: लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है, आपके गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचाता।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था। और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनने चलते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने? बताइए हमें।
2: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ के प्रार्थना।
2: हाँ, और जैसे कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन ले, उसके बाद फिर हम और आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
2: जी जी।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था, और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है, और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में, और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूं।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूं, और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा,
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं, और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है, और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
0: जी।
1: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो होता लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी, तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
0: जुड़ाव बहुत
1: जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती
0: है,
1: तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
0: क्या बात,
1: फिर
0: है?
1: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी, और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहाँ की पकौड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, पहाड़ी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे, और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे, और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
0: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में,
1: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादा मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे फोन पे, मोबाइल पे, अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
0: क्या बात है,
1: बंदरों की तरह पेड़ों में, आम, आजकल के बच्चों ने
0: खाना।
1: आप लोग को मतलब हाँ। या तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाएं, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम, जामुन, अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।
0: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास, बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
1: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
0: साधन है,
1: साधन भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस, और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लैबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यवसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
0: उत्तर प्रदेश था,
1: तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इन टू फिल्म्स, तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म्स बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
0: हूं, अलग ही दुनिया थी,
1: नहीं सोच ही नहीं सकते थे
0: जी।
1: तो खैर मैंने आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का 3 पेनी ओपेरा, इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD थी, अब तो काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता
0: पुणे में है, और
1: पुणे में है, और लखनऊ में भी अब खुल गया है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। उसी दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे MS अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली, तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से NSD का भी इंटरव्यू दिया,
0: किसी को बताया नहीं आपने,
1: किसी को नहीं बताया घर में, और जब लेटर आया NSD का सिलेक्शन का, तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
0: NSD करूंगी,
1: NSD में, तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेस करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को स्कॉलरशिप मिली है, तो सब कहती कि भट्टजी की नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का, बेटी का। भटजी की नौनी तो बहुत होशियार है। अब जैसी लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रही भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
0: नौटंकी
1: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड ये तो भांड कहते थे, भांड भी करेगी, जाता था, बिल्कुल। बहुत पुराना। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिहर शैलेश वो वहां के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा मतलब बाद में आके कर लेना है, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी पापा, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे NSD लेकर गए।
0: क्या बात है।
1: वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया, 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहाँ रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी, 250 की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगा, क्योंकि
0: उसमें बहुत बड़ी बात थी,
1: 250 की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करे, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड,
0: उसमें बहुत बड़ी रकम थी,
1: बहुत बड़ी रकम उसी में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं ये मेरा सफर रहा दिल्ली से जी, मतलब देहरादून
0: से दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। गाना

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं ये फिल्म हम आपके हैं कौन। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहे। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन।
1: अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
0: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है हिमानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है वेब सीरीज, उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है बताओ पहाड़ों में, आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आस पास के गाँव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहे, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे। और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते थे, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खास तौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है,
1: हमने तो ये भी कठिन है सारा काम लड़कियां और औरतें ही करती हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगाने से लेके सब कुछ।
0: हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं,
1: बिल्कुल
0: सलाम
1: बिल्कुल।
0: तो हम आपको भी कर रहे हैं कि
1: पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं
0: जी जी,
1: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन, महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
0: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानीशुपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी,
1: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है निजी स्तर पर, कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
0: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन के, बस वही हम खा रहे
1: हैं। वो भी कट चुके हैं।
0: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
1: जी जरूर।
0: बस इस पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक भी होता है, मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं, क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो एनएसडी रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं, इमेजिन की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग, जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें

0: आज भी देवकी भौजाई याद है, और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ कुछ होता है, और
0: रिफत भी और दिलवाले दुल्हनिया की भी, रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार,
1: उमराव जान में भी आपने काम किया,
0: उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस टाइम का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी, वो बहुत किरदार
0: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है, ऐसी बुआ का आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने डीडीएलजे की बुआ, तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है
1: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज का सातवां घोड़ा
1: मम्मो कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं, और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप, कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
0: कोई राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं, और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है, तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है, और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है, शेक्सपियर ने भी कहा है कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
1: रंगमंच है,
0: रंगमंच है जिंदगी, तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये तो जिंदगी सिखाती है
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है,
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब तो ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे, जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
0: जी,
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफी सारे लंबे आवर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आवर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ, और सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं। तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए
0: जी।
1: लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा
0: जी, बिल्कुल।
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल। और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है,
0: बताना
1: चाहे आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूफ करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस
1: लंबी
0: यात्रा
1: है, और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है
0: जी। अब गाना सुनवाए एक,
1: जरूर।
0: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल
1: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है, मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूं।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रीकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े

0: कलाकार जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की, चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे आप चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना, और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहाँ पे,
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
0: जी
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं माफी चाहता हूँ, तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था, आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी जी,
1: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए
0: जी जी।
1: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया, तो ये इस तरीके का रहा सफर।
0: ये सफर इस तरह से चलता रहा। हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं
1: जरूर,
0: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
0: अच्छा देखिए आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूँ
1: जी,
0: और वो है तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे, ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं
1: जी जी जी,
0: है ना
1: जी, जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूँ ना
0: जी,
1: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
0: क्या बात।
1: पिताजी के साथ।
0: वाह।
1: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
0: वाह।
1: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान
0: जी जी जी,
1: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
1: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
0: वाह।
1: और ये जो थ्रेडिंग है
0: जी,
1: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
0: अच्छा।
1: तो वैकुंठ वेणु जो है लॉकडाउन के समय पे पिताजी मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ

0: हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए, आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मांसरी को वेणु भी बोलते हैं
1: जी जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जरोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
1: जी।
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शरणाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें, और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया, पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें।
1: वाह।
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसोधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ रेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: सारा जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: एक मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, वो इतना आसान, जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी, जी।
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
0: जी।
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ेगा।
1: तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस चीज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल,
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में, जिनका आप जिक्र करना चाहें, आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए
1: जी। वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है
0: जी।
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी जी,
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो।
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी जी जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
1: जी,
0: जी जी। और
1: ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
0: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह वाह,
1: अन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है,
1: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मन मर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह,
1: बहुत सारी पिक्चरें
0: जी, बिल्कुल
1: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
0: हाँ,
1: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
0: जी जी, बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्त सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि जी मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें वह फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट है बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख लेंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: उसका ऐसा साउंड।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: है। ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में गया था इटली में, वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वाज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी।
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊं।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है।
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंद निकल
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी,
1: मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी,
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय किए जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल, जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
0: जी।
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है।
0: बिल्कुल,
1: इसका साउंड में सुनाता हूं आपको
0: जरूर।

0: क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने।
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है,
0: बहुत बजाया मैंने इसको।
1: जी जी,
0: मैंने अपने एल्बम में भी बजाया।
1: जी,
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या
0: जी?
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ।

0: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
1: क्या प्यारी बात है जी।
0: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
1: जी। जी
0: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
1: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
0: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूँ
1: जी।
0: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है
1: जी। जी
0: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
1: वाह,

0: ये भी सारे गाँव है,
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती ही नहीं है
0: जी।
1: तो इस महफिल को यहाँ रोकते हुए,
0: आपका आपका और अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है,
1: मैं समझ सकता
0: आपका हूं। भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी,
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई,
0: ये तो फरमाइश नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है
1: जी जी जी जी। तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है,
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने
1: जी।
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। मैं आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते, रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना,

0: तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
1: जी।
0: जैसे सपोज हो रहा है ना ये कंपन जो हो रहा है,
1: इसको
0: हम विब्राटो कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
1: जी।
0: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
1: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
0: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
1: जी।
0: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
1: अरे बाप।
0: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
1: जरूर
0: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है जी, कुछ जी। फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं, ऐसे कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है, एक कलर्स चलने का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके।
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का।
0: वाह, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। हमारी सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आपको जानकारी दिए देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हमारा नियमित कार्यक्रम गीता संदेश आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक की व्याख्या। प्रस्तुति ही रहेगी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की।

किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार आप सुन सकते हैं शाम 7:00। युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवाणी सुनवाएंगे आपको शाम 5:30 पर।

आपके भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप इस प्रकार से सुन सकते हैं। रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप उठा सकते हैं रात्रि 9:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और अब सुनिए गुमशुदा संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि ओम प्रकाश पुत्र रामचंद्र वासी स्कूल के पास गांव खेड़ी ब्राह्मण सलारपुर रोड जिला कुरुक्षेत्र जिन्होंने ये दर्ज कराई है शिकायत अपनी कि उनका लड़का मोहित जो कि 23 अप्रैल 2026 से गुमशुदा है जिनका आज तक कोई पता नहीं चला है। पिता का नाम ओम प्रकाश, उम्र करीब 23 साल, कद 5 फुट 6 इंच और शादीशुदा है। हुलिया इस प्रकार है, रंग गोरा और शरीर पतला। इन्होंने नीले रंग की कमीज व काले रंग के जूते पहने हैं। अगर इनके संबंध में कोई भी सूचना अगर आपको प्राप्त है तो आप PSI संजीव कुमार पुलिस चौकी सुभाष मंडी थाना कृष्णा गेट थानेसर से संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र इस प्रकार है 8168603677। और अब एक अन्य गुमशुदा संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि सीवन मंडल पुत्र कैलू मंडल वासी वार्ड नंबर 6 आरोहा भैरापट्टी जिला सुपौल बिहार हाल गांव जो कि रहते हैं अभी फिलहाल बिलोचपुर तहसील पेहवा जिला कुरुक्षेत्र ने अपनी दरख्वास्त दी है कि उनके लड़के प्रदीप जो कि 29 मई 2026 को कहकर गया था कि मैं बिहार जा रहा हूं जिसका आज तक कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ, ना ही ये पता चला है कि उनका लड़का कहाँ है या किसी भी तरीके का कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। और इनका इनके संबंध में अगर कोई सुराग आपको है या कुछ जानकारी है तो आप थाना शहर पेहवा से संपर्क कर सकते हैं। हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ, गोल चेहरा, उम्र 32 साल, वैकद 5 फुट और पैंट शर्ट पहने हुए हैं। और सूचना अगर आपको इनके संबंध में कोई है तो आप थाना शहर पेहवा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 8235766175। सूचना समाप्त हुई। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे अपने जो आप कह सकते हैं कि हाँ छुट्टियां सभी की तो नहीं लेकिन बच्चों की हैं और जो भी जिनकी भी छुट्टियां हैं उन सभी को इन सब चीज़ों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हम कि आप सभी अपने परिजनों के साथ या जहां कहीं भी आप जा रहे होंगे वहां अपना ख्याल तो रख ही रहे होंगे, साथ ही प्रकृति का और अपने आसपास के जो लोग हैं उन सभी का भी आप ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। तो कार्यक्रम का आगाज़ आज भरोसा फिल्म के गीत के साथ जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है रवि शंकर शर्मा का यानी रवि का।

और ये कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म है थ्री इडियट्स। शांतनु मोइत्रा का संगीत है और गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म नटवरलाल का गीत। आवाजें थी मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत था राजेश रोशन का। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म बादशाह से। आवाज है राहत फतेह अली खां की और गीत को लिखा है फना बुलंद शहरी ने और साथ ही इसमें सहयोग दिया है मनोज मंतशिर ने।

और ये कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है अनारकली, गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संग धुन बनाई है इस गीत की सी रामचंद्र ने।

और दोस्तों यही थी कार्यक्रम गाने नए पुराने की आखिरी प्रस्तुति। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के गीत पसंद आए होंगे और इसी सबके साथ इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से ज्योतिष्मा को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिषमा की ओर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, ये कार्यक्रम जो कि आपके सपनों, आपके जोश और संघर्ष और सफलताओं के लिए हम लेकर आते हैं, युवा आप सभी जो केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत हैं, आपकी ऊर्जा, सोच और नवाचार समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आज के दौर में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और बेहतर भविष्य की भी कुंजी है। पढ़ाई, कौशल विकास और सकारात्मक सोच के साथ युवा हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। तो उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज देखिए, आज है मंगलवार और आप सभी इंतज़ार करते हैं अपने खास कार्यक्रम का। तो उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि शाम 7:30 पर आप कार्यक्रम सुन सकते हैं, जिसमें आपकी भेजी हुई प्रतिक्रियाओं पर हम अपना जवाब देंगे। तो आपकी ईमेल्स तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ये कार्यक्रम जो कि युवा शक्ति के नाम है, तो कार्यक्रम का आगाज़ इस एक गीत के साथ।

और दोस्तों, आज आपके साथ जिस बात का जिक्र करना है कि हर छात्र युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है, वो पढ़ाई के साथ व्यक्तित्व विकास क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता। अक्सर दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि अच्छे अंक ही सफलता की गारंटी है, लेकिन आज का जो कॉम्पिटिटिव ज़माना है, प्रतिस्पर्धा जो चल रही है आज के युग में, केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यक्तित्व, प्रभावशाली संवाद कौशल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच भी बेहद जरूरी है। व्यक्तित्व विकास का अर्थ केवल बाहरी रंग रूप से नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, सोच, बोलने के तरीके और दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता से भी है। एक छात्र जो कि पढ़ाई में भले ही अच्छा हो, लेकिन यदि वह अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है या टीम में काम नहीं कर पाता है, तो उसे आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। आज अधिकांश कंपनियां और संस्थान भर्ती के समय केवल डिग्री नहीं देखते, बल्कि उम्मीदवार का आत्मविश्वास, संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता और नेतृत्व गुणों भी जांचते हैं और परखते हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना जरूरी है, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए नियमित पढ़ना, नई चीजें सीखना, समय का सही प्रबंधन, सार्वजनिक मंचों पर बोलने का अभ्यास करना और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना बहुत लाभदायक होता है। याद रखिए दोस्तों कि यह अच्छी शिक्षा आपको योग्य बनाती है, जबकि अच्छा व्यक्तित्व आपको सफल और सम्मानित बनाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी निखारिए और जीवन की हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना कीजिए।

और दोस्तों, आज जिक्र कर रहे थे हम आपसे कि क्या ही किया जाए कि व्यक्तित्व को अपने आप चमका सकें। तो उसके लिए आप कुछ कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं। ज्ञान और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना अगर आप चाहते हैं तो डेली रीडिंग हैबिट्स आपको डेवलप करनी होंगी। वहीं अच्छी भाषा का प्रयोग करें, शिष्ट और स्पष्ट बोलना सीखें। साथ ही आप आत्मविश्वास को विकसित करें, स्वयं पर विश्वास रखें। कोई भी काम करने से पहले आप उस चीज़ के बारे में परख रखें, उसके बारे में जानकारी जुटाएं। साथ ही अपने समय का सदुपयोग करें। समय जो होता है दोस्तों, वो वापस तो लौट कर आता नहीं, उसका प्रबंधन। किसी भी प्रकार की सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें।

आना चाहिए। वहीं अपना लक्ष्य निर्धारित करें, बिना लक्ष्य के प्रगति कठिन होती है। लक्ष्य अगर फिक्स होगा आपका, आपका अगर एम आप डिसाइड कर लेंगे, उसको निश्चित कर लेंगे, तो उस दिशा में आप रोज अगर थोड़े थोड़े कदम भी बढ़ाएंगे तो एक दिन निश्चित ही उसको आप हासिल कर पाएंगे। वहीं अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच रखें, हर परिस्थिति में अवसर खोजें। जी हाँ, परिस्थितियाँ बना मिलती नहीं है, वो घड़ी जाती हैं, और वही इंसान कामयाब होता है जो कि नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपना काम हिम्मत और मेहनत के साथ करता रहे। और नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन बनता है। कुछ नया सीखने की ललक कभी खत्म ना होने दें, जैसे कि कंप्यूटर हो, कोई भाषा हो, कोई कला हो, कुछ भी जो आप नया आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। वहीं दूसरों को ध्यानपूर्वक जरूर सुने, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। जैसे कहते हैं ना कि तानसेन, एक मशहूर जो संगीतकार रहे, तो तानसेन अगर बनना है तो पहले कानसेन बनना होगा, यानी कि कानों से सुनना होगा। अच्छा सुनेंगे तभी आप अच्छा बोल पाएंगे। वहीं आगे है कि सार्वजनिक मंच पर बोलने का अभ्यास करें, उससे झिझक कम होती है, भय खुलता है, और जब निरंतर अभ्यास होता रहता है तो एक दिन आप अपने आप को पाएंगे कि हाँ आप बेझिझक बेधड़क बोल रहे हैं। वहीं अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाएं और अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें कमजोरी नहीं अपना अनुभव बनाएं कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है। वहीं अच्छी संगति चुने, जो कि मित्रों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, संगत का रंग जरूर आता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखें। वहीं साथ ही साथ आप दैनिक समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, समसामयिक ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपना मोबाइल और सोशल मीडिया का लिमिटेड यानी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कीजिए, संतुलित उपयोग कीजिए। इनका जरूरी है आज के जमाने में, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, ये सब आपको खुद विचार करना है और अपना डिसीजन आपको लेना है। वहीं दूसरों का सम्मान करें, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। स्वच्छ और सादगी पूर्ण रहन सहन अपनाएं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हैं सबके सामने वैसे ही रहें। टीम में काम करना सीखें, सहयोग की भावना का विकास होता है इससे, और आपका मनोबल भी बढ़ता है। और कोई काम जो चार दिन में होना था, जब हम टीम मिलकर के करती है तो वो काम एक दिन में भी संभव है। धैर्य रखें, बड़ी सफलताएं जो हैं समय और निरंतर प्रयास से मिलती हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपने आज कहा और अभी का अभी कोई काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें। और अगर व्यक्तित्व विकास को एक दिन की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे व्यवहार और निरंतर सीखने की जीवन भर चलने वाली एक सुखद यात्रा है।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, आज व्यक्तित्व को निखारने की बातें की जा रही हैं। ऐसा है कि व्यक्तित्व विकास कोई जादू नहीं जो रातों रात हो जाए। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि बड़े बड़े परिणाम ला सकती हैं। ज़रा सोचिए कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स में से एक आगे चलकर नेता, वक्ता या सफल अधिकारी बन जाता है, जबकि दूसरा कहीं पीछे रह जाता है। अंतर अक्सर केवल अंकों का नहीं होता, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, हमारे व्यवहार, अनुशासन और सीखने की ललक का होता है। आज का युवा यदि प्रतिदिन केवल 30 मिनट भी स्वयं के विकास के लिए निकाल ले, तो एक वर्ष में उसके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ सकता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, नए लोगों से संवाद करना, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना, ये सभी व्यक्तित्व को निखारने के सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं। दोस्तों, याद रखिए कि आपकी पहचान केवल आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके चरित्र से बनती है। लोग आपकी मार्कशीट कम और आपके व्यक्तित्व को ज़्यादा याद रखते हैं। वहीं APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक रहे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही आवश्यक है जितनी की पढ़ाई। तो संकल्प लीजिए कि हम केवल अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक और एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बनेंगे, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है और व्यक्तित्व विकास हमें नई पहचान देता है।

और दोस्तों, ये जो चर्चा रही आज आपके साथ की, व्यक्तित्व विकास केवल अच्छा बोलने या आकर्षक दिखने तक सीमित नहीं, हमारे और आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। ये हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, आदतें, अनुशासन और प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता, ये सभी एक सशक्त व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आयाम हैं। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, संतुलित आहार लेंगे और मानसिक शांति के लिए समय निकालेंगे तो हमारा आत्मविश्वास स्वतः बढ़ेगा। इसी प्रकार यदि हम अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे या पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे और प्रकृति के प्रति अगर जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करेंगे तो ये भी हमारे व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाएगा। याद रखिए कि एक अच्छा व्यक्तित्व वही है जो स्वयं के विकास के साथ साथ समाज और प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो। इसलिए दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए और हाँ, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से जरूर भरिए। इन्हीं सब बातों के साथ और आज के इस युवाणी कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने व्यक्तित्व को निरंतर निखारते रहिए, हर कदम आगे बढ़ते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें बंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा। और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग पर बल दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनाज को खराब होने से बचाने के लिए इस साल हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अगले 5 साल की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते अधिकारियों को पूरी तैयारी से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम शुरू करने को कहा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे गणेशन ने बताया कि अनाज का खुले में भंडारण अथवा उचित भंडारण के अभाव के कारण प्रदेश में अनाज का 4-5% तक नुकसान हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा में 66 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की क्षमता है, जिसे 130 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न के नुकसान पर रोक लगाने के लिए ढके हुए सुरक्षित गोदामों के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का उचित इस्तेमाल करने की कार्ययोजना बनाने के आदेश दिए। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा और मजबूत करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी कंसल्टेंट के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने चरखी दादरी जिले में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखा जाएगा।
1: मैं बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राव साहब के अपील पे चरखी दादरी में जो मेडिकल कॉलेज बनने जाएगा उसको राव तुलाराम जी के नाम पे करने की स्वीकृति दे दी है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दक्षिण हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो वीर रहे हैं उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है।
0: स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्रयासों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदान और संघर्षों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। राज्य के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने करीब 104 करोड़ 16 लाख रूपये के विकास कार्य शुरू किए हैं।
1: हर जिले में अब महिलाओं की क्लिनिक खुलेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत। ये बहुत बड़ी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकार की भी। अमृत योजना, जो अमृत फार्मेसी आज तक सिर्फ रोहतक के पीजीआई में रही है, अब ये अमृत फार्मेसी हर डिस्ट्रिक्ट नागरिक अस्पताल में खुलेगी। इसके साथ साथ एक नई योजना जो हमने लॉन्च की है वो है टेली ईसीजी को लेकर। स्टेट में पूरे पीएचसी जो 600 हैं उनमें ईसीजी होगी।
0: उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य में 766 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आरती सिंह राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान अनुसार सरकारी अस्पतालों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ईंधन बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और आवाजाही के लिए सार्वजनिक साधनों के प्रयोग पर बल दिया है। आज चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा,
2: मैंने पहले कुछ दिन साइकिल का इस्तेमाल किया, अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ईवी का इस्तेमाल भी गजब का है। इसमें भी फ्यूल का जो है खर्चे वाली बात नहीं रहती है, बूंद बूंद घड़ा भरता है। किसी भी तरह से वो हर नागरिक का भागीदार बने फ्यूल बचाने में, इसी योगदान को लेकर के कोई बस में चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है।
0: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए के 8 से 10 जून तक होने वाले उत्तर भारत क्षेत्र जोन 2 के सम्मेलन के मद्देनजर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईईडी सौरभ सिंह, चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक डॉ सागर प्रीत सिंह हुड्डा समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सम्मेलन के दौरान सुरक्षा, यातायात और पार्किंग इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस का हरियाणा विधानसभा के साथ बेहतर समन्वय के लिए राजपत्रित रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सम्मेलन के शुभारंभ मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हरियाणा पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुरक्षा के एहतियाती उपायों के अंतर्गत 2 मार्शल और वर्दी में 25 सुरक्षा अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय की पूर्व उप कुल सचिव सुमन वशिष्ठ ने आज कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार की उपस्थिति में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुल सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। हरियाणा के राज्यपाल एम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष द्वारा सुमन वशिष्ठ की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री सुमन वशिष्ठ ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर लाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चलाए जा रहे विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत हरियाणा में 15 जून से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण शुरू होने जा रहा है। हिसार जिला की अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विशेष पुनर्निरीक्षण 14 जुलाई तक चलेगा, जिस दौरान बीएलओ एक गणना फार्म भरेंगे।
3: बीएलओ हर एक घर में जाकर के एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे। इस इन्यूमरेशन फॉर्म पर वोटर की कुछ डिटेल्स जो है वो भरी जाएंगी। तो पहली रिक्वेस्ट तो मैं ये करना चाहूंगी लोगों से कि जब बीएलओ आपके घर पे आए तो उसे अपनी सही जानकारी दें। यदि आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, जैसे पुराना एपिक पड़ा हुआ है 2002 का 3 का, तो वो जो है वो आप निकाल लें, उससे भी आप जानकारी उसको दे सकते हैं। यदि आपको यह ध्यान है कि आप उस समय मतदाता सूची में कौन से बूथ पर थे, कौन सी जगह पर थे, क्या आपका
0: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार पलवल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हरियाणा में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की।
5: श्रोताओ, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चौथे अध्याय के 32, 33, 34 व 35 श्लोकों की व्याख्या। पूर्व के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उन सब का यहाँ तक उपदेश देकर अब उसी को पुनः संक्षेप में कहते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर कर्म करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात अब तक 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, इसके अतिरिक्त अनेक और यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है, क्योंकि साधक की प्रकृति के अनुसार उसकी निष्ठा और उसके साधन अलग अलग हो जाते हैं। सकाम अनुष्ठान से जन्म मरण का बंधन तथा नाशवान फल की प्राप्ति होती है, जैसा कि अभी इसके पूर्व श्लोक में कह करके आए हैं। ये 12 यज्ञ तथा वेद में वर्णित वे सभी यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होता है, वे सभी कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार ये सभी यज्ञ मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं, जिन्हें कर्म जन्य कहा गया है। कर्मों के तत्व रूप यज्ञों को भली भांति जानना तथा फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करना ही कर्म बंधनों से मुक्त होना है। सांसारिक असंख्य क्रियाओं से संबंध जोड़ने पर कर्म बंधन होता है तथा संसार की उन क्रियाओं से संबंध तोड़ने पर कर्म बंधन नहीं होता, तब केवल और केवल मोक्ष होता है। यहाँ ध्यातव्य यह है कि मन, इंद्रिय व शरीर की क्रियाओं से निष्पन्न यज्ञ लोक हितार्थ होते हैं तथा लोक हितकारी का कल्याण होता है। 12 प्रकार के यज्ञों का तथा वेद में आए अनेक यज्ञों का वर्णन किए जाने पर इन यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ यज्ञ का निरूपण करते हुए कहते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परं तपः, सर्वं कर्वाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परं तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जिन यज्ञों में सांसारिक वस्तुओं की प्रधानता होती है तथा जो सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, जो द्रव्य की प्रधानता वाला है, वह द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। इससे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, उन्हें ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता न होने के कारण यह ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ कहा गया है। ये सभी यज्ञ कर्म जन्य कहे गए हैं और ये संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ कर्म जन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचार जन्य है। इस प्रक्रिया को आगे श्लोक में व्याख्यात किया जाएगा। इस प्रकार द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञीय प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म तथा वेद शास्त्र में वर्णित शुभ कर्म रूप यज्ञ, ये सब के सब यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं और इन साधनों का फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होना है। वह जिस साधक को यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। इस श्लोक में गीता का यह संदेश है कि ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है तथा ज्ञानी पुरुष का सभी जगह आदर होता है, अतः हम भी ज्ञानवान बने। कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्थात हे अर्जुन, तू परमात्मा के यथार्थ तत्व ज्ञान को, जो जन्म मरण के कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे महापुरुष के उपदेश वाक्य को जब श्रोता को उसके कल्याण की बात को समझने में देरी लगती है तो वे कह देते हैं कि दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय जान, ऐसे में भगवान मानो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो किसी दूसरे तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय व ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए नम्रता सरलता पूर्वक रहते हुए शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करते हुए उनके सिद्धांत के अनुसार अपने को ढाले, केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता व विनम्रता से प्रश्न करे। फिर वे तत्वदर्शी जिन्हें परमात्म तत्व का अनुभव हो गया है, जिन्हें वेदों व शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान हो, ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के जाकर ज्ञान प्राप्त कर। ऐसा करने पर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष जो दंडवत प्रणाम से, सेवा से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप बोध का उपदेश देंगे। यहाँ यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि विनम्रता सरलता व सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, अतः हम विनम्र सरल व सेवा भावी बने। इस प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का उपदेश देकर आगे के इन श्लोक में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं व्यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू इस प्रकार फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अर्थात ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान के उपदेश के अनुसार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगे। सूर्य रश्मि से जैसे अंधकार के विनाश के बाद परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का नित्य और अचल ज्ञान हो जाने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए सभी प्राणी आत्म स्वरूप हो जाते हैं। ऐसा होने पर यह अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसके अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है। इस तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार गुरु से विधि पूर्वक शरणन मनन निधि ध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को और फिर आगे स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है, तब उसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आपने श्रवण किया श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 32 से लेकर 35 तक की व्याख्या, प्रस्तुति थी डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी और भाइयों आज है दिन मंगलवार और इस दिन कार्यक्रम लेके आवा है फोन इन। और फोन इन में आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा भाई खादों का संतुलित प्रयोग पर। जो भी किसान भाई खादों के बारे में जानकारी लेना चाह तो भाई वो हमारा जो स्टूडियो का नंबर है 01744221322 पर कॉल कर सकते हैं और भाई खादों का संतुलित प्रयोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर शशिपाल जी, उनसे जानकारी लेंगे कि खादों का संतुलित प्रयोग के बारे में। तो आओ सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन।
1: कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों फोन इन कार्यक्रम आज इस कड़ी में हमारा विषय है कि खादों का संतुलित प्रयोग कैसे करें। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शशिपाल जो क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी हैं उपनिदेशक कार्यालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र के अंदर। और जो हमारा संपर्क सूत्र रहेगा वो बहुत जरूरी है। संपर्क सूत्र हमारा है 201-322 जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल तक फोन करेंगे उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत जरूरी है। एसटीडी कोड है 01744221 एसटीडी कोड 01744 तो नंबर बनेगा 01744221322।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो हम बातचीत कर रहे थे कि जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा खादों का संतुलित प्रयोग, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शशिपाल जो क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्षेत्र के अंदर। और जो संपर्क सूत्र हमने आपको बताया था कि 2213322, उस जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से संपर्क करेंगे उनके लिए एसटी रिकॉर्ड जरूरी है, और वह 0744, यानी जो हमारा संपर्क सूत्र है 0744221322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
7: आकाशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
6: डॉक्टर साहब, एक तो वैसे समय की मांग है कि हम क्या करते हैं कि एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं भी जितना ज़्यादा खाद गेर देंगे उतनी ज़्यादा हमारी फसल हो जाएगी, और फिर ऐसा होता है कि इतना नुकसान हो जाता है कि खाद ज़्यादा गिरने से कई बार जो है फसल भी खराब हो जाती है। देखो वैसे तो खुराक की बात है, चाहे मानस हो चाहे डांगर हो पेड़ पौधे हो, सब खुराक चाहिए जरूर, लेकिन ये भी वैज्ञानिक विधि है कि संतुलित चाहिए। आदमी गाना खा लेगा तो दिक्कत,
7: बिल्कुल जी,
6: भाई डंगर गाना खाएगा उसने दिक्कत,
7: और हर चीज की बुरी जी,
6: तो अति हर चीज की बुरी है, तो इसे आवश्यक है कि जो हर चीज का संतुलन रखा जाए। ऊपर से एक अभियान भी शुरू हो गया है, खेत बचाओ,
7: खेत बचाओ,
6: तो वहां पे भी इस बात का विशेष महत्व है कि अगर हम खेती जो है वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे या हम अंधाधुंध खाद, अंधाधुंध बीज, अंधाधुंध सब कुछ करेंगे तो नुकसान तो कहीं ना खेत और खेती दोनों को है।
7: बिल्कुल जी।
6: तो आज इस स्थिति में जानना चाहेंगे कि जो इस समय जो हमारे साथी अरवली फसल है उसको ले रहे हैं, जो अब ले रहे हैं, वो किस तरह से खेतों में खाद का संतुलित प्रयोग कर सकें।
7: देखो, जब भी खाद का मेनली जो हम रासायनिक खाद की बात करें
6: जी,
7: केमिकल वाले जो खाद हैं उनका जब भी प्रयोग करना है हमें संतुलित मात्रा में और बिल्कुल सही समय पे
6: जी
7: और सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए
6: जी,
7: क्योंकि अगर हम रासायनिक खाद ज़्यादा डालेंगे तो उससे फसल को नुकसान होगा, आर्थिक हानि होगी हमारी, तथा ज़मीन की जो सेहत है वो भी ख़राब होगी और जो हमारा पानी है वो भी ख़राब होगा
6: जी।
7: तो इसलिए जब भी हमें खाद का इस्तेमाल करना है, केमिकल खाद का, वो बिल्कुल संतुलित मात्रा में और वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए अनुसार ही करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए।
6: सर, पहले मेरा एक सवाल रहेगा,
7: हाँ जी,
6: जब हम कहते हैं संतुलित, संतुलन का ही मतलब सबसे पहले बताना आवश्यक है ताकि समझे कि मतलब हम क्या कहना चाहते हैं।
7: जैसे मैंने बताया, मैं संतुलित का मतलब जैसे जो वैज्ञानिकों ने सिफारिश की है
6: जी,
7: और मैं उसी बात पे आ रहा था। और दूसरा, आपने अपने खेत की मिट्टी चेक करवानी है
6: जी,
7: मिट्टी चेक कराने के बाद जो सोयल का सैंपल है आपका, उसके अनुसार जो सिफारिश है वही खादों का आपने इस्तेमाल करना है। संतुलित से दूसरा मतलब है कि आप कई बार किसान क्या है कि देखा देखी ही लोगों के डाल देता है, भाई उसने 2 कट्टे डाले तो मैं भी 2 कट्टे डालूं, हो सकता है आपके खेत में 1 कट्टे की आवश्यकता ना हो
6: जी।
7: दूसरा, किसान क्या करता है कि जिस खाद की, जिस केमिकल रासायनिक खाद की हमें आवश्यकता नहीं है वो भी डाल देता है
6: जी।
7: तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें पहले अपने खेत की जांच करवानी है मिट्टी की, उसके बाद जितनी मात्रा में सिफारिश सरकार द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है उतनी मात्रा में वही खाद आपने खेत में इस्तेमाल करनी है।
6: सीधी सीधी सी बात है कि जिसको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, वैज्ञानिक या हमारे विश्वविद्यालय जो अनुसंधान केंद्र है वो सिफारिश करते हैं उतनी ही मात्रा में
7: डालनी है,
6: अपनी तरफ से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। या कई बार पड़ोसी की परिस्थिति कुछ और होती है, हम उस पड़ोसी की परिस्थिति को देख के खुद खाद गिरना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना।
7: दूसरा मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर हम केमिकल खाद ज्यादा डालते हैं तो इससे हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ने के बजाय
6: घटती है।
7: जी, इसके लिए जरूरी है कि हम जो अन्य खादें हैं केमिकल खाद के अलावा, जैसे कंपोस्ट है, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, सिटी कंपोस्ट है, इसके अलावा डैंचा है, हरी खाद है,
6: हरी और जैविक खाद,
7: जैविक खादें आप जरूर डालें।
6: जी,
7: क्योंकि इनमें एक तो सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, दूसरा जमीन के जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो इससे बढ़ता है।
6: जी,
7: जबकि जो हम केमिकल वाली खादें डालते हैं इनसे घटता है और जमीन की जो पानी लेने की क्षमता है वो भी घटती है।
6: बिल्कुल, आज तो आपके माध्यम से जो आपके अनुसंधान केंद्र हैं वो भी बार बार अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं।
7: हाँ बिल्कुल,
6: वो कह रहे हैं कि रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करना,
7: कम
6: सीधी सी बात है, उसका कहेंगे दुष्परिणाम तो सामने आए,
7: दुष्परिणाम भी है। इसके अलावा जो हमारी आर्थिक सेहत है वो भी खराब हो रही है, क्योंकि आप देखो अगर हम बात करें तो रासायनिक जो खाद है इनके ऊपर पिछले साल सरकार ने 1,70,00,000 रुपए की सब्सिडी दी है, तो कितने मतलब बड़ा अमाउंट है जो कि
6: बहुत बड़ा अमाउंट है जो किसानों के लिए और तरह से फायदेमंद हो सकता है।
7: हाँ जी,
6: सबसे पहले एक फोन ले ले। हेलो
8: हेलो, नमस्कार जी।
6: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
8: जांगड़े से बोल रहे जी, मांगेराम सैनी
6: जी। मांगेराम जी,

0: डॉक्टर साहब
1: ऐसा है जी, जो आपने डाया, जिंक और पोटास, ये आप इकट्ठा बुआई के जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे डाल सकते हैं, तथा 1/3 यानी कि जितनी आपने यूरिया देनी है उसका 1/3 हिस्सा आप बुआई के टाइम पे डाल दो
2: जी।
1: और उसके बाद जब आपने जो बाकी 2 हिस्से बचे यूरिया के, वो आपने रुपाई के लगभग 2 बार में 3 से 4 हफ्ते के बाद डालने हैं,
0: 21 दिन
1: के बाद। हाँ जी।
2: अच्छा, ये डॉक्टर साहब जी, 3 बार डालना ये खाद?
1: हाँ, 3 बार यूरिया आपने 3 बार डालना, बाकी सारा आप एक टाइम पे डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप DAP के अलावा SSP यूज कर सकते हो।
2: अच्छा जी।
1: हाँ जी। और अगर SSP यूज करना है तो SSP के आपने 3 कट्टे यूज करने हैं, और अगर आप DAP यूज करें तो फिर आपने 20% जो यूरिया है वो घटा देना है, क्योंकि
2: पता क्या जी डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे भी लोग देखा देखी के ना,
1: हाँ
2: वो हिसाब हो रहा जी, देखा देखी के ना जी, हम भी फिर इन्हें 2 कट्टी हम 2 गेरा नहीं,
1: वो बिल्कुल नहीं देखना। आपने अपना सोयल का भी तो, जैसे ट्रांसप्लांटिंग नहीं हुई है तो आप अपना मिट्टी का नमूना लेके उसको जाँच करवाइए, यहाँ कुरुक्षेत्र में BDO ऑफिस में लैब है, तो वहाँ पे भी आप करवा सकते हो, KVK में भी करवा सकते हो।
2: नहीं मारा यहाँ आया जाए जी, मिट्टी वाले जांच करवाने वाले।
1: हाँ, अभी हम हमारी भी टीम में चल रही है, वो भी सोयल सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसके जो सिफारिश हो उसके अनुसार ही आपने खाद का इस्तेमाल करना है।
2: जी जी,
0: ठीक ठीक है भाई,
2: ठीक है डॉक्टर साहब।
0: तो डॉक्टर साहब यही बात कर रहे हैं कि जो एक तो समय की मांग थी, जब हमने रासायनिक खादों का बीजों का प्रयोग शुरू किया था तब समय की मांग थी, धन
1: समय था कि हम जाग जाके किसानों को समझाते थे कि आपने डालना है किसी के खेत में, कहते हैं भी रात को डाल के आ जाते थे कि भी देख
0: वो
1: है। लेकिन जो अब समय है, अब यह है कि इनका प्रयोग कम करना
0: है, क्योंकि उस समय की मांग अलग थी, अब समय की मांग।
1: हाँ जी, अब हम आत्मनिर्भर है अन्न में, तब हमारे पास जरूरत थी कि हमें अन्न प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, लेकिन आज हमें जरूरत है कि अपनी जमीन को बचाना है, विष रहित खेती भी करनी है, क्योंकि जहर बहुत हर सब्जी में देख लो, हर चीज में जहर है, उसको भी बचाना है। दूसरा, आपने जो
0: अपनी जमीन
1: है उसको बचाना जरूरी है, जमीन रहेगी तो आगे खेती हम कर सकते हैं, और जमीन बचाने के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन हम बढ़ाएं
0: जी।
1: अब जिन जहां हम आजकल देख रहे हैं, आप किसी भी उसका सैंपल लो तो आपको ऑर्गेनिक 0.5 से कम ही मिलता है
0: जी।
1: और जिन खेतों के अंदर कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन यानी जो ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, उनमें 0.5 से 0.75 के बीच में मिलता है, जिसको हम कहते हैं मीडियम है, बहुत अच्छा तो नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वहां आप देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन 1 या उसके आसपास मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा
0: जी।
1: तो यानी कि वहां जमीन और केचवे मिलेंगे वहां, तो वहां जमीनें अच्छी है, और जहां जमीन अच्छी होगी वहां पैदावार अपने आप अच्छी होगी।
0: तो ये तो बात है कि हम जो है रासायनिक खाद कम करके जैविक और हरी खाद की तरफ चले, लेकिन जो रासायनिक खाद प्रयोग करनी है उसके लिए आप चर्चा भी कर रहे थे कि मिट्टी और पानी जांच का कितना महत्व है।
1: देखिए, अगर आपने रासायनिक खाद डालनी है, पहले तो मैं बता देता हूँ, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि हरी खाद, जहाँ हमने हरी खाद का इस्तेमाल किया कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, तो वहाँ रासायनिक खादों की मात्रा वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम मिट्टी और पानी का सैंपल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम रिकमेंडेशन देते हैं भी आपके खेत में किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे अगर हम आज एग्जाम्पल देते हैं कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की हरियाणा की ज़मीन में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है
0: जी।
1: लेकिन बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकता है और लोग डालते हैं, जबकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हमारी जमीनों में पहले ही ज़्यादा है,
0: जमीन को परेशान कर रहे हैं और अपना आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं,
1: आर्थिक बोझ भी और जो प्रोडक्शन है वो भी घट रही है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं, जरूरत से ज़्यादा आप दे रहे हो और लागत बढ़ रही है आपकी, और लागत बढ़ रही है तो आप कह रहे हो फिर भी बच नहीं रहा खेती में।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब आप संतुलित डालोगे तभी आपकी पैदावार भी बढ़िया होगी।
0: तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो सिफारिश की गई खाद है वो भी निर्भर करेगी कि आपने खेत में जो है बाकी हरी खाद या जैविक खाद का प्रयोग कितना किया।
1: yes.
0: उसको पर भी निर्भर करेगा
1: वो, उसमें हमने जो सिफारिश करते हैं ना तो उसमें लिखते हैं कि अगर आपने हरी खाद डाली है तो 20% आपने यूरिया कम डालना है
0: जी।
1: या मूंग लगाया है, ढेंचा लगाया है, या आपने कंपोस्ट डाला है तो 25% कम डालना है, तो हम सारा हर चीज़ की रिकमेंडेशन है। इसी तरह से अगर आपने मान लो अभी पैडी का सीजन है, बासमती लगाई है या PR लगाई है, तो PR में आपने थोड़ी ज़्यादा डालनी है नाइट्रोजन, अगर आपने बासमती लगाई है तो उसमें कम डालनी है, और बासमती में भी 2 वैरायटी है, अगर आपने लॉन्ग तो लंबे वाली लगाई है तो उसमें थोड़ी कम डलेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डलेगी। इसी तरह से PR वाले में जो आप हाइब्रिड लगा

0: करते हो तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो कम डलेगी और जो दूसरी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी है उसमें ज़्यादा डलेगी।
1: तो सर मेरा अपने किसान साथियों तरफ से मेरा सवाल है आपसे,
0: हाँ जी,
1: कि जैसे हमने कह दिया कि भी इसके अंदर 30 किलो 40 किलो 50 किलो या 3 कट्टे 4 कट्टे जो भी है खाद डालनी है, ये एक तयशुदा सिफारिश होती है विज्ञान, लेकिन जब हम और साथी डालते भी हैं लेकिन हम जब तक उस मिट्टी की जाँच ही नहीं करेंगे, हो सकता है उस मिट्टी को उन 3 कट्टों की जरूरत ही ना हो।
0: बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ, आपने मिट्टी चेक करा के ही डालनी है, लेकिन जो एक सिफारिश की जाती है वो एक नॉर्मल उसके लिए की जाती है, हो सकता है आपकी जमीन 3 की बजाय 4 कट्टे डालने की जरूरत हो, लेकिन जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके लिए सिफारिश वैज्ञानिक के द्वारा की जाती है कि नॉर्मल मिट्टी है जो आपकी नॉर्मल जमीन है उसके लिए।
1: और आजकल तो वैसे भी मौसम है, खेत खाली है, हाँ। तो अभी साथियों को मिट्टी पानी जांच करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी, हमारा भी अभियान चला हुआ है, हम सॉइल सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। तो
1: डॉक्टर साहब पहले एक बोल लेना। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
1: कहाँ से बोल रहे हैं
2: जी? मैं कुलक्षेत्र जी, वो मेरे थे।
1: अपन नाम?
2: सुभाष जी।
1: सुभाष जी, क्या पूछना है?
2: यही पूछा थे जीरी में, जो दुबई में क्या क्या गिरना थी आगे
1: जीरी में।
2: हाँ जीरी में
1: नहीं
2: लगाएंगे
1: खाद।
2: हाँ जी,
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जीरी में,
0: जीरी में जब आप अभी लगाओगे ना, रोपाई करोगे
2: तो डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: हाँ जी
2: नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी, जब आप जब आप रोपाई करोगे तो आपने 1 बैग DAP और जो 50 किलो यूरिया और 50 किलो पोटाश, ये तीनों चीजें, और 10 किलो जिंक, ये आपने एक टाइम पे डाल सकते हो।
2: ठीक है सर,
0: ठीक है। हाँ लेकिन अगर आपने, हेलो,
1: तो नर्सिंग होम में बात चल रही थी कि चलो ये जांच के बाद तो हम सब कुछ कर लेंगे, एक थोड़ा सा और थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे बीच में, एक बात मैं और कर लूँ जो आजकल एक आयतबा मची होती है कि खाद मिलने ना मिलने की बात आती है।
0: बिल्कुल,
1: और कितना मिल सकता है, मतलब हम क्या करते हैं, एक आदमी दूसरे पे कुछ संदेश, तीसरे पे कुछ संदेश, और एक भूमरसा फैल जाता है पूरे समाज के अंदर और फिर आयतबा मच जाती है।
0: नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किसान की तरफ से भी है और व्यापारी की तरफ से भी है कि एक किसान को कितने कट्टे खाद मिल सकती है
1: जी।
0: दूसरा वो पूछते हैं कि क्या 3 कट्टे मिलेंगे एक किले पे, 4 कट्टे मिलेंगे, ऐसी सरकार की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ अभी पिछले सीजन से जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि जिस किसान भाई ने मेरी फसल मेरा ब्योरा के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है
1: जी,
0: वो जैसे पहले खाद लेता था वैसे ही खाद ले सकता है
1: जी।
0: एक महीने में उसको 50 कट्टे खाद के मिल सकते हैं, चाहे वो DAP ले, यूरिया ले या NP के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ लेकिन अगर कोई किसान आवश्यकता से ज़्यादा खाद लेके जाता है और वो रेगुलर लेके जा रहा है हर महीने, तो उसकी पोर्टल से एक रिपोर्ट आती है जिसकी हम जांच करते हैं कि इसने खाद का कहाँ प्रयोग किया, क्या इसने सही प्रयोग किया या कहीं गलत किया या किसी व्यापारी ने गलत काट दिया।
1: बिल्कुल,
0: तो उसकी हम जाँच करते हैं, लेकिन किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है और कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है, जैसे वो पहले लेता था वैसे अब ले सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका मेरी फसल मेरे भी और आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
1: जी। और कितने किले की मतलब उसकी अपनी हुआ है,
0: हाँ, अपने जितने एकड़ है उसके हिसाब से वो ले जा सकता है
1: तो।
0: हाँ लेकिन मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि वो मंथ वाइज ही लेके जाए, जितनी उसको उस टाइम रिक्वायरमेंट है उतनी खाद वो लेके जाए, एक साथ पूरे सीजन की ना लेके जाए, जिससे कि थोड़ा सा, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से ही हर महीने खाद आता है।
1: बिल्कुल,
0: तो उसी हिसाब से किसान यूज करेंगे तो।
1: हाँ मान लीजिए किसान आज की 21 दिन की 22 दिन की खाद लेके भगजेगा, हाँ, तो दूसरा किसान तो इफेक्ट पड़ेगा वो,
0: बिल्कुल
1: वो रह जाएगा उससे, तो आप आज की लेके जाएं उसके पश्चात 21 दिन वाली जो लेके जाएं, अगले जो 42 दिन की जो बाकी वो लेके जाएं।
0: ट्रेंड चल रहा है पता नहीं कैसा है कि किसी को अभी आज मतलब कोई किसी को जरूरत नहीं है सिवाय नर्सरी में डालने के
1: जी,
0: और कोई जरूरत नहीं, लेकिन आज भी किसान पूरी फसल की लेके जा रहा है।
1: बस ये मेरे को भ्रम किस्ती बनी हुई है,
0: हाँ,
1: और किसान लगा लाइन, फिर कहते हैं किसान लाइन में लगा हुआ है भी अनावश्यक, आप लोग गए थे
0: लाइन में तो आज भी। अगर मैं कुरुक्षेत्र जिला की बात करूं तो हमारे पास 15,000 MT यूरिया का स्टॉक आज भी है, लेकिन किसान फिर भी ये लग रहा है कि भी पता नहीं मिलेगा नहीं, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाद सबको मिलेगा, खेत के हिसाब से मिलेगा, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी उसको आवश्यकता है उतना ही खाद हो ले।
1: आपके माध्यम से मैं हम ये संदेश दे दें कि खाद को लेकर घबराएं ना,
0: हाँ जी,
1: है तो बना बचाए, सबको मिलेगा पर्याप्त मात्रा में खाद है केंद्र पे उपलब्ध है,
0: उपलब्ध है और आज भी उपलब्ध है, आने वाले टाइम में भी उपलब्ध रहेगा पूरे सीजन के लिए। सब एक है कि आप थोड़ा सा यूज डीएपी की जगह एसएसपी कर सकते हो, एनपीके कर सकते हो, ताकि जो देश, क्योंकि आपको पता है इम्पोर्ट करते हैं हम सारा ये, तो
1: जी
0: तो उसमें कम खर्चा हमारा आए, इसलिए है कि देश के थोड़ा पैसा बचे।
1: सर वैसे तो आपका इस समय जो है मिट्टी जो है इकट्ठा करने का, कलेक्शन करने का काम चल रहा है, हालांकि हमारा रेडियो भी अगला जो मंगलवार रहेगा मिट्टी जांच और पानी जांच के महत्व के विधि के ऊपर ही है, तो जो साथी वहां तक जाते हैं कई बार सही रूप से क्या वो सहयोग कर पाते हैं आपको मिट्टी जांच, जब आप मिट्टी लेने जाते हो वहां पे या कुछ ऐसा अभियान चलाते हैं?
0: हाँ बिल्कुल जी, उस मिट्टी जांच के लिए जो भी हमारा पूरा स्टाफ है, कुछ हमने गांव के लड़के रखे हुए हैं साथ में, तो वो सारा बिल्कुल पूरा करते हैं, और जितना टारगेट हमारा आता है हर साल हम टारगेट अपना अचीव करते हैं, और अभी भी कंटिन्यू चला हुआ है प्रोसेस, और लैब से जैसे रिपोर्ट आती है फिर उस रिपोर्ट को गाँव में किसान तक भी पहुँचाते हैं।
1: कितने दिन में लगभग रिपोर्ट तैयार आ जाती है?
0: ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है जी, जैसे अभी हफ्ता पहले गए हैं उनके आ जाते हैं, तो लगभग 15 दिन में आ जाते
1: हैं, क्योंकि आगे 15 तारीख के बाद तो रुपाई भी शुरू हो जाएगी।
0: हाँ नहीं, अभी सीजन चला हुआ है, लैब मतलब 24 घंटे चल रही है और पूरे उसमें मतलब फुल कैपेसिटी से चल रही है लैब, तो उसमें कोई इशू नहीं है।
1: ये तो है कि आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ जो जागरूक हमारे किसान हैं वो भी चाहते हैं कि हम खुद जाके जो है सैंपल लेकर नमूना लेकर पहुंचे, तो उनके लिए क्या हो रहेगा?
0: अगर खुद किसान लेना चाहता है तो उसे अपने जो खेत का जिस किले का आपने नमूना लेना है, तो आप उसके चारों कॉर्नर से और एक बीच से 6 इंच नीचे से जमीन से मिट्टी का इकट्ठा करके फिर उसको मिला के अच्छी तरह वो चार पार्ट मतलब जो नमूना लेने का तरीका है उससे लेकर आप उस मिट्टी जो सैंपल मिट्टी बनी आपकी आधा किलो करीब उसको आप लैब में दे सकते हो,
1: और किस थैली में पाके उस पे हाँ किसान का नाम किलो का
0: सारा थैली वहाँ आप लैब में लेकर जाओ, सारा नोट करेंगे और उसके हिसाब से आपको फिर रिपोर्ट भी जल्दी दे देंगे।
1: ठीक,
0: और इसी तरह से अगर पानी का टेस्ट कराना है तो थोड़ा ट्यूबवेल चला के तो उसका फिर पानी नीचे का लेके और आप पानी की बोतल भर के वो लैब में आप दे सकते हो, वो भी वहीं पे जहाँ मिट्टी जांच होती है वहीं उसी लैब में।
1: इन्हीं शुल्क होता है या फिर इसके कुछ पैसे हैं?
0: जो हम कलेक्ट करते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फार्मर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, मतलब उसका कोई
1: फार्मर की बात कर रहे हैं, फार्मर को ही अपनी जांच करवानी
0: है ना, कोई पैसा नहीं है, जो हम कलेक्ट करते हैं उसका भी कोई पैसा नहीं, बल्कि हम देते हैं जो हमारे सहायक है उनको पैसे देते हैं।
1: तो कुरुक्षेत्र में किसान अगर आना चाहे कहाँ पे आएगा?
0: एक लैब तो हमारी यहाँ पे हर वैसे हर ब्लॉक में है लैब
1: जी,
0: शाहबाद में, पेहवा में, कुरुक्षेत्र में जो बीडीपी ऑफिस है वहाँ पे है
1: जी,
0: और केवीके अपना सेक्टर 13 में, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, नहीं तो हर ब्लॉक के अंदर भी लैब है, पेहवा है, शाहबाद है, तो वहाँ से भी आप कलेक्शन।
1: तो ये किसान साथी खुद भी जाके आपका भी इंतजार ना करें,
0: हाँ खुद करा सकते हैं,
1: खुद जाए और अपना जो सैंपल है उसकी जो विधि है उस विधि से सैंपल लें और जाकर के जो है अपनी जो मिट्टी पानी जांच करें, तभी खाद प्रयोग करने का फायदा है।
0: किसान अपने गांव के जो एडीओ हैं या सुपरवाइजर है हमारे, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपका कलेक्शन करने में सहायता करेंगे और आपका मिट्टी टेस्ट के लिए लेके जाएंगे।
1: लक्ष्मण तो मान के चलते हैं जो आपका जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र है हमेशा किसानों के लिए तत्पर ही है, आपसे कोई भी फोन पर संपर्क करें
0: बिल्कुल
1: आप सीधा मार्गदर्शन करते हैं उसको।
0: मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है, कभी बंद नहीं, अगर कभी उठा भी नहीं पाया तो मैं कॉल बैक करता हूं जी।
1: जी पहले एक फोन ले लें। हेलो हेलो
3: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: एक शिकायत आ रही मेरी।
1: नहीं पहला कहाँ से बोल रहे हैं?
3: डॉक्टर साहब से।
1: नहीं पहला आप बताएं आपका गांव कौन सा है?
3: हेलो
1: आपका गांव कौन सा है?
3: हेलो जी,
1: अरे आपका गांव क्या है, कौन बोल रहे हैं?
3: प्रतापगढ़ से है जी।
1: प्रतापगढ़ से, अपना नाम?
3: राम कुमार।
1: हाँ राम कुमार जी, आप बताइए क्या शिकायत है आपको? हाँ बताइए शिकायत, बताइए क्या शिकायत है आपकी?
3: शिकायत यह है जी, एक मतलब मन्ना 4 कट्टा लेने थे।
1: अच्छा,
3: और गांव में मतलब दुकाना खुल रही है।
1: अच्छा,
3: वह मतलब आधार कार्ड ले जा, खाद ले आवांगे।
1: अच्छा,
3: और मतलब ऐसे है जी, प्रथम खाद ले लीजिए तो मेरे पैसे ले लीजिए।
1: अच्छा,
3: 4 कट्टे के बजाय 40 कट्टे खाद के ले लिए उसमें। जब वो लेन गया वो कहने लगे तेरे पास 40 कट्टे जा लिए और 4 कट्टे की जरूरत थी। राम कुमार जी, डॉक्टर से बात करी करें जी।
0: ऐसा राम कुमार जी, अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो सेक्टर 7 में ऑफिस है डीडीए साहब का, तो वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं।
3: और इसी जो खाद बेच रहे हैं जी,
0: हाँ जी, उसको
3: लोगों को बुकवा लेते हैं,
0: उस पे पूरी कार्रवाई होगी। वैसे हम इसकी जांच अपने आप भी करते हैं, मैंने पहले बताया था शुरू में ही कि
3: पोर्टल से,
0: हाँ पोर्टल से हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है जो लगातार यूज कर रहा है खाद, या मैंने पहले ही बताया था कि उनकी भी हम जांच करते हैं, खुद ही जांच करते हैं। बाकी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कंप्लेंट डीडी ऑफिस में कर सकते हैं।
3: ठीक है जनाब,
1: ठीक है,
0: धन्यवाद
1: जी। जी सर,
0: हाँ जी,
1: तो हमारी यही बातचीत चल रही थी कि भी मिट्टी पानी सब जांच हो जाएगी और उस हिसाब से आपने खाद लेना भी है, खाद का प्रयोग करना, जैसे अभी भी ये सह कहा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना किसान साथ में जागरूक होना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड किसी को दें क्यों?
0: आधार कार्ड भी दे देते हैं और फिर ऐसी कई कंप्लेंट आती भी है हमारे पास, उसका कार्रवाई भी करते हैं। अभी पीछे महीने भी हमने 2 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, तो कार्रवाई भी करते हैं जो कंप्लेंट्स आती है। वो एक ऐसे ही थी जो इन्होंने बताई कि वह आधार कार्ड ले लिया, वो कह रहा मैं तो 3 किले का फार्मर हूँ और मेरा 15 कट्टे या 20 कट्टे काट दिए, तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो जो कंप्लेंट जिस टाइम पे हमारे पास आते हैं तुरंत कार्रवाई करते हैं।
1: तो मेरा किसानों की तरफ से यही आपसे पूछना मकसद यही था कि जो आपका या कृषि विज्ञान केंद्र के जो संपर्क सूत्र हैं वो क्या किसानों के लिए हर वक्त मतलब कम से कम तैयार है ना?
0: बिल्कुल,
1: किसान को बेझिझक आपसे बात कर लें,
0: कभी भी बिल्कुल आ सकते हैं। सेक्टर 7 में ही ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं आ सकते तो सभी बीओज है जो उनके पास भी फर्टिलाइजर की पावर है, तो बीओ ऑफिस में भी जाके आप,
1: क्योंकि हमारे जो किसान साथी है थोड़ा सा, देखो अब तो युवा पढ़ा लिखा भी आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा उसके दिल में होता है कि मैं किसान हूँ, पसंद की मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा,
0: नहीं बिल्कुल सुनवाई होती है,
1: या कोई साइंटिस्ट मेरी बात का जवाब देगा या नहीं देगा। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं,
0: अगर कोई जवाब हमारे पास नहीं भी है तो हम यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट से, वैसे तो हमारी ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है हर महीने 2 दिन 1 दिन की यहाँ पे उचाणी में, तो अगर कोई हमारे पास नहीं भी है तो हम वहाँ से उसका आंसर जान के किसान को बताते हैं।
1: तो ये आवश्यकता तो ये है कि किसान साथी बेझिझक बिना शर्म के आपके पास या जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, इन पे आए और आपसे अपनी समस्या को चर्चा में लेके आए।
0: बिल्कुल,
1: उसे थोड़ा डिस्कस करें आपसे भी, ये हमारी समस्या है खाद की, पानी की, या किसी फसल की, नस्ल की, या किसी की बात हो, चर्चा तो करें कम से कम।
0: बिल्कुल, जब चर्चा करें तभी समाधान भी निकलेगा।
1: और खाली जो आसपास के जैसे साथी ने कहा जो भ्रामक साथी बैठे हैं, दूसरे व्यापारी के बैठे हैं, उनके मकान में आए, उनके सीधा ही विभाग से संपर्क करें।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ समस्या ये आती है कि भी किसी ने क्या जी अपने आधार कार्ड दे दो, 40 कट्टे में ले आऊंगा, बाद में टुकड़ों में दे दूंगा।
0: इसमें सिस्टम है एक पोर्टल पे, या तो आप अपना थंब इंप्रेशन मतलब अंगूठा लगा के ले सकते हो, या फिर आधार कार्ड से ओटीपी जाता है, जब ओटीपी बताई होगी तभी उसने दी होगी
1: जी,
0: तो अगर ओटीपी नहीं बताएगा तो नहीं।
1: तो इसलिए किसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है,
0: जागरूक होना बहुत जरूरी है। और अभी हम जैसे कार्यक्रम के अंत की तरफ है, तो मैं एक अपील जरूर करूँगा किसानों से दोबारा फिर
1: जी,
0: कि किसान जितना जरूरत है उतना ही यूरिया डीएपी एसएसपी लें, आवश्यकता से ज़्यादा ना लें, हर महीने टारगेट के हिसाब से खूब खाद आ रहा है, कोई मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना उसको जरूरत है उतना ही ले और जितना आवश्यकता है उतना ही डाले, ज़्यादा भी ना डाले, क्योंकि अभी आलू में लोग 8-8 कट्टे डीएपी डालते हैं जबकि रिकमेंडेशन एक ही बैग की है
1: जी।
0: तो इस तरह से ना करके ज़मीन को भी बचाएं, और अभी खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है हमारा, तो खेत को अपनी ज़मीन को बचाएं ताकि हम जो अपने आगे आने वाले पुस्ते हैं उनके लिए अच्छी जमीन हम देके जाएं।
1: तो कहने के लिए यह है कि खाद का संतुलित प्रयोग करें और अपनी मिट्टी पानी की जांच कराएं और कोशिश करें कि जो हरी खाद जैविक खाद है उसकी तरफ बढ़े और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करें, ताकि अपनी जो खेत है वो बचे, खेती संपन्न हो। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि किसान साथी इसका पूरा लाभ उठाएंगे। एक बार से फिर आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, थैंक यू।
4: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर शशिपाल जी और बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। इसी के लिए कार्यक्रम किसानवाणी यही संपन्न हो रहा है। सले भाई ने दो इजाजत, अच्छा भाइयों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे हैं?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे?

0: सेहतमंद होगी।
1: अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का विषय था कि खादों का संतुलित प्रयोग, और बातचीत में हिस्सा ले थे डॉक्टर शशिपाल जो है क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी थे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के अंदर। इसी गल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी
5: और साले भाई की
4: आराम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार, इसमें मैं आपका अपना साथी गिरधारी
1: और साला भाई
0: दोनों काम त्याग कार्यक्रम के सारे सुनने वाली मीठी मीठी प्यारी
1: राम राम
0: साले भाई।
1: हाँ गिरधारी भाई,
0: जितना जोश आप में है नी,
1: हाँ,
0: जितनी मीठी बनिया बोल रहे हो
1: जी,
0: ऐसा लग गया कुछ घना मीठा खा गए हो। अब देखा सर साले भाई, खाना भी जरूरी है
1: बिल्कुल,
0: और खाना मीठा भी नमकीन भी, लेकिन संतुलित
1: संतुलित।
0: देखो हमने इससे पहले संतुलित खाद की बात करी, और संतुलित और पौष्टिक
1: पौष्टिक
0: तो भी होना चाहिए। आप आड़ बाड़ पता नहीं के खाने लग जाओ, हाँ करीब और आपका जी करे के बोल ले करें आप उन्हें,
1: अच्छा, चाउमीन का जिक्र कर
0: के क्या बोल लो आपने, बर्गर वो फलाना खा लो कतिकदार, लेकिन उन्हें जीवन में नियमित ना बनाओ कि रोज जो जुट रहे हो सांझ की रोटी नहीं खाई, धेरे डी पे दोपहर की नहीं खाई, चालो होटल में यूं नहीं करना।
1: गिरधारी भाई एक बात देखा है ना, जो छोटे बालक है आजकल के, वो खासकर जो है ना, पहले वाली बात तो रही नहीं, जिस तरह आप दूध पिए कर थे, घी खाए करो थे, राजीव चूरमे का पिंड ले रहे,
0: आए हाय के बात करते
1: हैं, इधर फिर देखेंगे थोड़ी देर में
0: चूरमे वाला डोलमे में कुछ और भी है,
1: डोलू वाला तो दिखाया ही था ना,
0: वो बाल में हाँ।
1: तो गिरधारी भाई बात न्यू है कि जो बच्चे जिस तरह आजकल का जिक्र भी कर रहे हैं, ये ज्यादा चाउमीन तली बुनी चीजें ज्यादा खावा, और ज्यादातर देखा है कि भाई जो हॉस्पिटल है ना उनमें जावा फिर वहाँ
0: बिल्कुल।
1: और भाई पहला देखो कि जो हमारे बुजुर्ग हैं आज तक भी इसे ले से ना तो बीमार होंगे बिल्कुल, हमारे तो ज्यादा काम करा, और काम के गले गले उनके शरीर का जिक्र कराना तो बिल्कुल स्वस्थ रहे वहाँ, क्योंकि भाई उनके पहला खाया पिया उनका जो है ना आज भी पौष्टिक था,
0: पौष्टिक था
1: बिना मिलावट के।
0: ये तो यूँ कहते हैं मैं घी नहीं खांदा,
1: हाँ,
0: मैं चूरमा नहीं खांदा,
1: बिल्कुल
0: मैं खीर नहीं खांदा,
1: हाँ,
0: मैं कुछ भी तो नहीं खांदा,
1: हाँ,
0: के खावागा नहीं मैं तो ऑर्डर कर लूंगा, अरे के ऑर्डर कर लेगा वो पत्नी के ऑर्डर कर लेना,
1: मैदा के ऊपर ज्यादा जोर हो गया,
0: ये चीज खाओ हम नहीं कहते दिन बंद कर दो, लेकिन समय के हिसाब से करीदार जी कर गया खा लिया भाई,
1: वो भी बड़काना देखता है जी तो करा, देखो जी तो कर तो जी तो करेगा,
0: कदी के दाँत नुकसान को नहीं
1: जी,
0: जो रोज जो खाओ उसका नुकसान है
1: जी,
0: कहीं के करें तो रोटी पौधे को नहीं,
1: हाँ,
0: सीधा ऑर्डर कर दे खाया का है, और ऊपर तक एक बीमारी पड़ गई उनके जी, खावा तो गर्म उसका पीवा ठंडा
1: ठंडा, यू भी तो चल गया
0: और क्लेश
1: बिल्कुल।
0: अब शरीर के क्या कहा, बीमार पड़ूंगा भाई
1: पड़ेगा तो यही भाई, देखो अगर उसने तंग करेंगे शरीर ना तो नुकसान तो होगा हमारा,
0: मैं गर्म सर्द हो गया तो
1: गर्म सर्द हो गया
0: सारे बाल का माथ पड़ गया, आन गर्म गर्म कुछ पिज्जा खा लिया मान लो ऊपर तक कोल्ड ड्रिंक,
1: यू जो है ना पानी वाला तो काम खत्म ही कर दिया उन्होंने भाई, जब रोटी के ला पानी पिए करा था,
0: हाँ।
1: पर आज के करा हुआ चाउमीन पानी बर्गर
0: पानी के
1: कोल्ड ड्रिंक पीवा के लिए गए
0: साले भाई, पहला तो आदमी करे के था गर्मी का मौसम पड़ रहा बना लो सत्तू,
1: जो सत्तू बिल्कुल सही करे
0: बाल को पतला सत्तू हो गया के,
1: हाँ
0: अच्छा मान लो कभी गाना बढ़िया ख्याल मोटा ख्याल लिया तो ब्याह शादी में खाना पड़ जाए, देखो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आज कहे चलो भाई बना लो खिचड़ी
1: गिरधारी भाई,
0: खिचड़ी का बड़ा यूज
1: है बात नहीं हुआ, मैं भी जो है ना एक दिन चला गया बाहर, मेरे ते बोले निकल राबड़ी पीवेगा,
0: अच्छा।
1: मना तो राबड़ी कभी जिंदगी में पी ही नहीं थी,
0: ओहो
1: मैं क्या भी मार दिखाओ राबड़ी किस तरह,
0: इसे दो बग्गे थे
1: बस बग्गे थे परले मारू एरिए
0: में
1: परा नहीं, हाँ तो महा भाई दिखाओ राबड़ी, वो बोले भाई न्यू न्यू कर राबड़ी बना, मैं पी तो कभी आ नहीं, स्वाद लगी तो पी लेंगे, तो जो है ना राबड़ी ले आए वहां, मैं तो जो है ना पहला सोचा मैं एक कटोरी मत दो, फिर उन्हें दी गिलास में, मैं तो दो तीन गिलास पी गया, मैंने तो स्वाद लगी गिरधारी भाई,
0: अच्छा।
1: अरे बोले ठंडी रहेगी यार,
0: ठीक
1: मैं फिर तो भाई एक और दे दो, मैंने तो सारा दिन बस जितना भी रहा नहीं, जब भी मना प्यास लगा मैं तो राबड़ी पी था,
0: अच्छा मैं समझ गया बात,
1: हाँ।
0: पिछले साल जब मिले गया
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, मैं था ही नहीं,
0: जो चूक गया एक काम कर रहा, पहला थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया
1: जी,
0: पता क्या मेरा बार बार चूरमा खाने जी कर रहा,
1: अच्छा चूरमा खा लेंगे,
0: हाँ मैं पट्टी के
1: बिल्कुल सही कह रहे,
0: आप खाओ चूरमा और भाई ने सुना चूरमा बर्गी दागनी
1: बिल्कुल।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
6: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
5: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
6: 120-8765 यानी 1208765 देख कर ही खरीदें।
5: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
6: 9813173102।
5: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
7: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
8: यह संदेश आकाशवाणी के सहयोग से पेश किया गया है।
5: किसानों की पहली पसंद कंपोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
6: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
5: कंपोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
6: 120-8765 यानी 1208765 देख कर ही खरीदें।
5: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंपोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
6: 9813173102।
5: कंपोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
8: प्रसन्न भाई
9: जी, गिरधारी भाई
8: किस लगा चल रहा?
9: बस पूछा ना, जब देसी की जब
8: लावा देसी की, अरे ये तो हां
9: ये
8: खाली क्यों क्यों काटा कौन था?
9: ये मिक्सर लगे था,
8: मिलावटी मिक्सर था, इसमें थोड़ा बेसन भी रखा था, थोड़ा ऊपर रखा
9: लिया, ज्यादा स्वाद लगा।
8: हां
9: स्वाद बन गया इसका।
8: अच्छा ये देखिए, ड्राई फ्रूट पैक हमने इसमें,
9: अरे ये काजू मुंह आए।
8: हां ये काजू
9: दाख, ये पैक दाख बड़ी मीठी लिया रखी था ना।
8: बस मुझे था तुम्हारा न्यू ब्रांड लिया था, मसाला पहले खाऊंगा ताकि घर जाकर वही बोला मेरे को भी खा ले।
9: बहुत बढ़िया करा गिरधारी भाई, इस तरह ले आए करो।
8: मैं ले फिर नहीं करो।
9: हां
8: ले तो कुछ और गया मैं।
9: अच्छा
8: देखो आपके हाथ में।
9: अच्छा यहाँ संदेश?
8: हाँ
9: यहाँ संदेश तो बहुत आ रहे भाई, आगे आज
8: बताओ कौन से है।
9: सबसे पहला है जो ये संदेश आया है गिरधारी भाई, वो आया है जगूड़ी से, रणधीर सिंह, बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मन कीरत, मनराज। और ये लिखा है कि विनोद भाई ने संयुक्त परिवार के बारे में जानकारी दी।
8: किस दिन दी?
9: और
8: चश्मा, थोड़ा चश्मा साफ करियो, उन्होंने लिखा बुधवार ने दी।
9: हाँ बुधवार ना, हाँ ठीक ठीक करे, बुधवार वाले दिन दी थी यह जानकारी, हमने बहुत बढ़िया लगी, इसके लिए आपका क्या धन्यवाद।
8: अच्छा ओके, क्या ना क्या।
9: और ये न्यू कहे हैं कि भाई जितने भी कार्यक्रम दे रहे हैं गिरधारी भाई, रिसाला भाई,
8: सुरेंद्र
9: भाई, चतुरु, सब भाइयों को कहे मेरी राम राम।
8: तो रिसाला भाई
9: जी,
8: जो भाई हमारे साथी हैं, ये निम्न श्रोता हैं, रणधीर, गुलमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, विदेन, मनकीरत, मनराज।
9: हाँ
8: निम्न श्रोता हमारे,
9: बिल्कुल
8: कार्यक्रम को सुनते हैं
9: और जवाब भी सारे दे हैं।
8: जवाब दे
9: हैं और इन्हीं यहाँ तो इतने पक्के श्रोता है ना, ना भी कुछ कहें ना फोन करके बात करेंगे।
8: हाँ।
9: भाई आज हम न्यू नहीं कर सके, संदेश नहीं भेज सके, ये हमारी बात आज की।
8: तो इनने विनोद भाई का जो कार्यक्रम था संयुक्त परिवार के ऊपर बड़ा अच्छा लग गया।
9: बिल्कुल,
8: तो उन्हें बड़ी खुशी है कि जो प्रोग्राम हमारे साथी दे रहे हैं इनके उनकी उम्मीद पर खड़े उतरे हैं।
9: बिल्कुल,
8: और यही खुशी है कि हमारे साथी में सुनकर उसकी प्रतिक्रिया दे
9: जी।
8: तो इस संदेश का इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम में आगे भी ये ऐसे संदेश करेंगे ताकि इन साथियों का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आगे भी चलता रहे। और भी बोला
9: हाँ बिल्कुल, अरे गिरधारी भाई अगला जो संदेश आया है वो आया है नागल से।
8: अच्छा,
9: लिखने वाले हैं इंद्राज पारथ, डॉक्टर परीक्षित, हार्दिक कंबोज और उनके परिवार के सभी सदस्य।
8: क्या बोला
9: इन्होंने? लिखा है कि भाई जो 25/5 को शले भाई ने गिलो बेल की जानकारी दी बहुत अच्छी लगी, और एक और बात लिखा है यहाँ कि जितने भी भाई हैं क्या सबको राम राम, विनोद चतुरु भाई, गिरधारी भाई और जितने भी क्या किसान वाणी का परिवार है सबको राम राम।
8: चश्मा साफ कर लिया आपने?
9: हाँ,
8: मंगा गया था भी चश्मा साफ नहीं रहा आपका।
9: हाँ,
8: तो सल्ले भाई मारा करते भी जो साथी हैं, जो पहले साथी थे उनने भी
9: बिल्कुल,
8: रणधीर उसके परिवार ने भी
9: बिल्कुल,
8: और जो इंद्राज है, प्रशिक्षित है, हार्दिक है, इन सब ने हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी
9: राम राम। गिरधारी भाई
8: जी,
9: यो जो है ना, यो नागल से इंद्राज है ना
8: जी,
9: अरे रणधीर जगुड़ी
8: जी,
9: दोनों इतने पक्के श्रोता ना भाई, कोई जवाब दे ना दे यहाँ जरूर संदेश भेज हमारे द्वारा।
8: नहीं, और भी श्रोता हमारे पक्के।
9: हाँ,
8: और इन श्रोता, ये श्रोता के कारण में प्रोग्राम चल रहा है।
9: बिल्कुल,
8: अरे बताऊ।
9: हाँ,
8: सोचे संदेश है इनके ये।
9: हाँ,
8: साखर सावली बैठे पास
9: बिल्कुल, अरे यही कान लाए बैठे होंगे यहाँ रेडियो का।
8: बिल्कुल।
9: हाँ,
8: तो ये कह रहे हैं ये 25 तारीख ने जो रिसाले भाई ने ग्लो बेल के बारे में जानकारी दी वो बड़ी अच्छी लग गई
9: जी। बिल्कुल,
8: तो इस तरह जानकारी दे रहे करो।
9: हाँ, देवे बिल्कुल, हम तो कहें कि भाई जो हम जानकारी दे हैं भाइयों को अच्छी लगनी चाहिए, और भाई जो जानकारी हम दे दी और उस पर खड़े उतर गए तो हम तो क्या है कि भाई कितना फायदा जो है हमारे किसान भाइयों ने उठाया उस बात का।
8: बिल्कुल, तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान साथी जो बोले श्रोता है उन्हें किसी न किसी रूप में उसका लाभ मिला है।
9: बिल्कुल,
8: खाने वाले का स्वास्थ्य ठीक हो, बेचने का आर्थिक व्यवस्था ठीक हो, यानी कोई ना कोई लाभ तुम्हारे साथी ने मिला है, ये हमारी इच्छा है। तो संदेश भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, ये कार्यक्रम में आकर संदेश भेजते रहेंगे। और भी आपके पटारे में संदेश कोई?
9: गिरधारी भाई बिल्कुल है, और आज तो भाई फोन इन में भी भाई ने फोन करा था।
8: ऐसा कौन सा भाई है?
9: और वो भाई है हमारे द्यांगला से मांगेराम सैनी।
8: अच्छा,
9: दिनेश सैनी, देवा सैनी, प्रवीण सैनी और उनके परिवार के सभी सदस्य
8: जी।
9: ये लिखे हैं कि भाई हमारी तरफ से सभी को राम राम, रिसाले भाई, गिरधारी भाई, विनोद भाई, चतुरु भाई, वीरेंद्र भाई को बढ़िया प्रोग्राम पेश करने के लिए कह उनका धन्यवाद, और भाई कहें कि भाई इस तरह के प्रोग्राम जो है ना ये कार्यक्रम दिन दे रहे।
8: तो मराकंत भी जो साथी हैं सारे, मांगेराम जी, दिनेश, देवांश, प्रवीण, इन सब ने हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी राम राम, राम। और इन हमारे कार्यक्रम अच्छे लग गए, मैंने खुशी की बात है कि इनकी उम्मीद में खड़े उतरे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम वो कार्यक्रम दे सकें जो हमारे साथियों ने अच्छे लग गए।
9: बिल्कुल,
8: और अच्छा लग भी नहीं कि उन भाव है, अच्छा मतलब है कि वो कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम जिन तय हमारे साथियों ने लाभ हो कोई ना कोई।
9: बिल्कुल,
8: जब इन्हें लाभ नहीं होगा फिर फायदा क्या उस कार्यक्रम का, फिर तो यूं यूं आए टाइम काटे और बग गए।
9: बिल्कुल,
8: तो अगर भी इनकी जो इच्छा है भी ऐसे प्रोग्राम देते रहें तो भाई हमारा प्रयास है कि हम इनकी मुद्दों के अनुसार ये कार्यक्रम देंगे। एक थोड़ा सा विराम ले लें।
9: हाँ बिल्कुल,
5: किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज
6: अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध।
5: कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर
6: 120-8765 यानी 1208765 देखकर ही खरीदें।
5: खर्चा कम, उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
6: 9813173102।
5: कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक।
8: सला भाई
9: जी, गिरधारी भाई
8: पता क्या है?
9: हाँ,
8: थोड़ी देर पहले आपको थे भी एक संदेश हमारे पास आ गया, उन्होंने लेना।
9: हाँ ले लें, क्यों नहीं, भाई ना प्रयास करके भेजे।
8: हाँ, ये संदेश बोल रहे, देखो भाई जो लाया है, तो ये जो संदेश हमारे पास आया है ये आया है, देखियो बोला योगी बोला बराड़ा जिला अम्बाड़ा से लिखा।
9: हाँ, रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल, उनके परिवार के सदस्य।
8: कह रहे बोला
9: ये कहें कि भाई जो कार्यक्रम दिया था रविवार और वीरवार को, जो फरमाइश के कार्यक्रम हुआ के ना, मैं वही सुनता हूँ, खासकर अच्छे लगते हैं
8: जी।
9: मुझे हरियाणवी फिल्में और लोकगीत, एक बात जानना चाहता हूँ कि जितने भी आकाशवाणी के केंद्र हैं
8: जी,
9: सभी पर पत्रों की फरमाइश के कार्यक्रम चले हुए हैं, एक आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है जहां से एक भी पत्र पर कार्यक्रम नहीं है
8: जी।
9: कुरुक्षेत्र वाले यह कहते हैं कि खत बंद हो चुके हैं, पोस्ट कार्ड बंद हो चुके हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं
8: जी। तो रसल भाई जो हमारे साथी का ये आए हैं योगी मोहल्ला अपराणा से, रवि कुमार, राहुल जीत कौर, गुरशबद, इनका जो आया है बात उनके सही है, वो उसके चल रहे होंगे वैसे मन लाधक उन चल रहे होंगे क्योंकि आकाश में तो पूरे देश में एक को है।
9: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
8: तो पहले तो इनके मारकंते सबने मीठी मीठी प्यारी प्यारी
9: राम राम।
8: अगर ये कह रहे हैं कि जो आपके रविवार और वीरवार के प्रोग्राम होते हैं, यानी इन्हें कहने का मतलब है कि आपकी पसंद और थाई संदेश मारे गीत
9: जी
8: कर हमें बड़े अच्छे लगते हैं और ये हरियाणवी फिल्मी गीत भजन रागनी सुनना पसंद क्या है।
9: बिल्कुल।
8: दूसरा कहते हैं कि सारे केंद्रों पे तो भी चिट्ठी चल रही है हमारे पर नहीं कि हमारे पता आंदी को नहीं को ये हमारे पास तो संदेश ही आवे या मेल आवे, यूँ कह लिया हम ज्यादा मोड़ लूंगे फिर ये ज्यादा एडवांस हो गए भी।
9: गिरधारी भाई बात न्यू है भाई, राहुल कुमार भाई नाम तो यही कहें कि भाई डाकखाने में जाकर पता करें कि भाई जो है ना पोस्ट कार्ड चल रहा है या नहीं, अगर चल रहा है तो भी भेज दें।
8: नहीं भाई पता क्या है, अब जब ये केंद्र सरकार का संदेश आया था कि पोस्ट कार्ड बंद है,
9: बिल्कुल बंद है,
8: तो उस समय हमने बंद कर दिया था।
9: हाँ।
8: अब क्यों है प्रोग्राम कुछ हो फिर चिट्ठी शामिल नहीं हो, किसी खत शामिल ना हो, किसी का कुछ शामिल ना हो,
9: बिल्कुल,
8: तो एक नियम आ गया कि भाई संदेश भेज दो और वो चिट्ठी का आसान है,
9: बिल्कुल आसान,
8: चिट्ठी मिलेगी नहीं मिलेगी, संदेश देखिए भाई ये भी भेजा प्रोग्राम चल चलते तो खटक से पहुंच गया,
9: खटक नहीं पहुंच गया, चिट्ठी थोड़ी आ गई,
8: हां ये तो ज्यादा पना पान दे फिर परसों
9: पहुंच गई, बिल्कुल सही कह रहे,
8: तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम,
9: यूं आसान काम हो गया,
8: ये कर देख लो।
9: हां यूं हमारे द्वारा जो है ना इसी तरह भाई हम तो कह राहुल कुमार राहुल ना भाई जल्दी से जल्दी टाइप करें लिखें और भेजो, माना फटते नहीं मिलता
8: और बाकी साथियों ने भिजवाओ
9: भिजवाओ,
8: तो संदेश भी जनता बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आकर संदेश भेजते रहेंगे। अरे कहूँ पीछे ब्याह लोग की बात कर ली, ब्याह गीत भी सुन ले करो खाली ब्याह की मुठाई
9: भाई, देखो ब्याह भी चल रहे हैं, आरा का करेंगे भी
8: सुनो फिर ब्याह में क्या क्यों है
9: सुनवाओ।

0: सर हमें जीतो ऐसा ग्राउंड सुनते रहे व्यायाम
1: बिल्कुल
0: हाँ। लेकिन गड़ी क्या चलना पड़ेगा
1: ज्यादा
0: मस्त ना हो
1: हाँ।
0: इजाजत ले लिया
1: बिल्कुल।
0: तो इसके अलावा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुमन गिरदारी
1: और इशाले भाई की
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संचार FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात। और दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में जिसमें आपकी भेजी हुई प्रतिक्रियाएं होती हैं, आपके सुझाव, आपके विचार, आपकी भावनाएं, जो आप सभी अपनी ईमेल्स के जरिए हम तक पहुंचाते हैं, इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात, तो आपकी बात लेकर हाजिर है आपके रेडियो दोस्त ज्योतिषमा। स्वीकार करें बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। और देखिए, ईमेल्स हम तक पहुंची हैं, हमें देश के विभिन्न कोनों से ईमेल और जो संदेश मिलते हैं, जिन्हें आप अपने कार्यक्रमों के प्रति अपना स्नेह और जो मूल्यवान सुझाव आप व्यक्त करते हैं। और आज के अंक में हम आपके ऐसे ही कुछ संदेशों और प्रक्रियाओं को, जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको लेकर के आपके समक्ष आए हैं, जिनका उत्तर भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इन साथी की ईमेल के साथ। रेडियो के साथ उठता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में अब आपा खोता हूँ, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ। और ये खूबसूरत सी जो पंक्तियाँ हैं वो हमें लिख भेजी हैं रवि कुमार राहुल जी ने, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। और आपके साथ हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत राहुल और गुरु शब्द सिंह राहुल। तो सब सर्वप्रथम तो देखिए, आपके इस खूबसूरत से अंदाज के लिए हम आपको कहना चाहेंगे शुक्रिया। आपने जो भी लिख करके भेजा है, जी हाँ, बिल्कुल ही सच है आपकी बातें। जो भावपूर्ण रचना पढ़ करके मन जो है हमारा सचमुच प्रसन्न हो गया, और रेडियो के प्रति आपका प्रेम, समर्पण और आत्मीय लगाव हर पंक्ति में झलक रहा है। और आज के डिजिटल युग में जब कोई श्रोता रेडियो को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मान लेता है, तो सभी रेडियो कर्मी, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, चाहे इधर प्रोग्राम करने वाले अनाउंसर्स हों, सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय हो जाता है। रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कारों ज्ञान और अपनत्व का एक ऐसा पुल है जो दूरियों को भी करीब ले आता है। और आपकी ये अभिव्यक्ति बताती है कि रेडियो अब भी लाखों दिलों की धड़कन बना हुआ है। आपकी तरह समर्पित श्रोता ही किसी भी प्रसारण संस्था की वास्तविक शक्ति होते हैं, और हम आपके इस स्नेह, विश्वास और निरंतर जुड़ाव के लिए हृदय से आपके आभारी हैं। आशा है कि आपका ये प्रेम और सहयोग आगे भी इसी प्रकार हमारे साथ बना रहेगा। आप अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें निरंतर उत्साहित करते रहेंगे, और आपके उज्ज्वल भविष्य और सुखद जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं हम आपको भेजते हैं। तो ये थी हमारे कार्यक्रम में पहली ईमेल। अगली ईमेल की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम तलक पहुंचाया है डेर पाटन गुजरात से हैं धीरज भी रावारी। आप कहते हैं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार और टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। तो आपको भी हमारी ओर से और टेक्निकल टीम की ओर से और सभी सुनने वाले साथियों की ओर से हम भी आपको प्रेषित करते हैं सादर प्यार भरा नमस्कार। हमारे घर पर जब खाने का बचता है, मतलब खाने की कोई चीज़ बचती है, तो इसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पशु पंछियों को खिला देते हैं। और रविवार का रात्रिकालीन फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ आपकी बातचीत से बहुत सारी जानकारी मिलती है, और साथ ही किसान भाइयों के कार्यक्रम में भी प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती के बारे में कभी कभी जानकारी उपयोगी रहती है। श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह सवेरे कार्यक्रम बेहद पसंद है, और सभी अनाउंसर भाई बहन की पेशकश सर्वोत्तम होती है। सभी को हृदय से अभिनंदन। हमारी कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, जी हाँ, हम ये जानते हैं अच्छे से। हमारे को, हमें ये आपकी जो हाजिरी रहती है इस कार्यक्रम में, वो तकरीबन नियमित ही रहती है। और जो आदरणीय, मतलब धीरज वी राबारी जी जो हैं, आदर योग्य हैं आप हमारे, और इतनी दूर से गुजरात से आप हमें अपनी ईमेल पहुंचाते हैं। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रति जो आपका स्नेह है और विश्वास है और आत्मीयता जो आपके संदेशों से झलकती है, उसके लिए हम हृदय से आपके धन्यवादी हैं, आभारी हैं। आपने अपने पत्र में, ना ईमेल में, माफ़ कीजिएगा, ना केवल हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना की है, बल्कि एक सुंदर और प्रेरणादायक संदेश भी दिया कि घर में बचा हुआ जो खाना रहता है वो हमें पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए। बचा हुआ ही नहीं, अगर हो सके तो थोड़ी दरियादरी दिखाते हुए हमें अपने
हिस्से में से कुछ हिस्सा इन जीवों के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। और वास्तव में ये संवेदनशीलता और मानवता का परिचायक है, जिसकी कि आजकल देखा जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा सकती है। संवेदनशीलता जो है वो परिलक्षित होनी चाहिए हमारे हर एक काम से, चाहे वो जीवों के प्रति हो, चाहे इंसानों के प्रति हो, या प्रकृति के प्रति, जो भी जानदार चीज़ें हैं उन सभी के प्रति हमारा संवेदनशील होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको निभाने के लिए हमें तत्पर हमेशा रहना चाहिए। और जानकर बहुत खुशी होती है कि आप रविवार का जो रात्रिकालीन हमारा फोन इन कार्यक्रम रहता है, और किसान भाइयों के लिए जो प्रसारित प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती संबंधित कार्यक्रम हैं, लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह सवेरे का आपने जिक्र किया, उसके आप नियमित श्रोता हैं, आप उसको नियमित तौर पर सुनते हैं, और जो भी उनसे उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है उसकी भी आपने सराहना भेजी है। और जो श्रोताओं का ये जो प्रेम रहता है, सहयोग हमें जो है वो बेहतर करने के लिए, कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। और हमारे सभी उद्घोषक, प्रस्तुतकर्ता और तकनीकी टीम के कार्य की जो सराहना आपने की है उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं, उस उत्साहवर्धन के लिए। और आपने जैसी जागरूकता दिखाते हैं आप अपने ईमेल्स के जरिए, नियमित श्रोता ही आकाशवाणी की वास्तविक शक्ति है। और भविष्य में भी आप अपने बहुमूल्य सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं हमें भेजेंगे, ऐसा हमारा यकीन है। आपके सुझाव हमारे कार्यक्रमों को और अधिक उपयोगी और रोचक बनाने में सहायक होंगे। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद।

0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम आपकी बात में। अगला ईमेल जो नज़र आ रहा है वो है, आदरणीय प्रसारक जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुरुक्षेत्र से प्रसारित सभी प्रोग्राम अच्छे हैं और समय अनुकूल सभी को सुनता भी हूँ, अपनी भागीदारी भी बनाता हूँ और आपका सुबह सवेरे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी SMS नहीं जाता तो बड़ी मायूसी हाथ होती है। अगर दूसरा ऑप्शन व्हाट्सएप से भी कर देते तो बहुत अच्छा होता। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से हैं आप, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज और शरीफ नवाज। तो सर्वप्रथम तो हम आपको कहना चाहेंगे धन्यवाद दिल से कि आपने जो मोहम्मद यासीन अनजान जी और साइमन नवाज जी शरीफ और दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड के हैं आप श्रोता, आपने जो अपनी आत्मीय प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं आपके। बहुत खुशी होती है कि जब आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित तौर पर सुनते हैं और उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाते हैं। हमारे लिए आपका जो स्नेह है, विश्वास और सहयोग, यही सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं और आपने विशेष रूप से प्रातःकालीन कार्यक्रमों की सराहना की है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही आपने एक

बनाया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल तो व्हाट्सएप पर संदेश देना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि संदेश के लिए हमने जो मैसेज का ऑप्शन छोड़ा हुआ है आपके पास में, तो वो नॉर्मल जो मैसेजेस रहते हैं उसी पर ही हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा और हमें अभी इंतज़ार करना होगा। और हम आशा करते हैं कि आपका जो ये प्रेम है, स्नेह है और सहयोग है, आगे भी इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा और आप अपने बहुमूल्य विचार, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर भेजते रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं ना केवल हमारा उत्साहवर्धन करती हैं, बल्कि कार्यक्रमों में और बेहतर और कुछ अच्छा और कुछ उपयोगी और उन्हें रोचक बनाने के लिए भी सहायक सिद्ध होती हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए, सुखद जीवन के लिए हम मंगल कामना करते हैं। आप निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हों। और अब चलते हैं अगले ईमेल की ओर। जी हाँ, देखते हैं हमारे किन साथी की ईमेल है। अब देखिए अगला जो मेल है वो थोड़ा सा लंबा ईमेल है। सबसे पहले मेरी ओर से कार्यक्रम आपकी बात के प्रस्तुतकर्ता को अभिवादन। आपने लिखा है कि 27 मई 2026 को कार्यक्रम सुबह सवेरे संध्या जी के साथ सुना, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान पर अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी दी। इसी अवसर पर उन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले के बालंद गाँव की मेजर अभिलाषा के जीवन, उनकी उपलब्धियों और उल्लेखनीय कार्यों की भी पर भी प्रेरक प्रकाश डाला, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जेंडर समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरा कार्यक्रम अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी रहा और इस उत्कृष्ट और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए आपका ईमेल थोड़ा लंबा है तो हम एक एक करके उत्तर दिए देते हैं, वरना थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। वरना तो 27 तारीख का जो आपने जिक्र किया, जिसमें कि सुबह सवेरे कार्यक्रम लेकर आई थी संध्या जी, जिन्होंने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान रहा या जो भी उनकी नीतियां रही उन सब पर, जो भी उनके कार्य रहे उन सब पर उन्होंने प्रकाश डाला और आपको ये कार्यक्रम पसंद आया, ज्ञानवर्धक लगा, आपको उससे प्रेरणा मिली, जानकारियाँ दी गई जो इस कार्यक्रम में वो सभी आपने सराही हैं, आपके जो ये संदेश है उससे यही जाहिर हो रहा है। और साथ ही आपने हरियाणा के रोहतक जिले के जो बालंद गांव की मेजर हैं अभिलाषा, जिनके जीवन का उन्होंने जिक्र किया, उनकी उपलब्धियां और उनके जो उल्लेखनीय कार्य थे उनके ऊपर भी प्रकाश डाला संध्या जी ने इसी कार्यक्रम में। तो देखिए जब भी हमारे देश में कहीं कुछ खास हो तो ये आकाशवाणी का दायित्व बन जाता है कि भाई वो जो उपलब्धियाँ हैं और जो खास हों तो उनको थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और उनको शामिल ज़रूर किया जाए। और हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जेंडर समानता पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, तो ये सब जानकारियां जो हैं उन्होंने साझा की। साथ ही आपको कार्यक्रम रोचक भी लगा, शिक्षाप्रद भी लगा और प्रेरणादायी रहा। तो इस सब के लिए संध्या जी को हम ये संदेश ज़रूर भेजेंगे कि आपकी सराहना आई है इस कार्यक्रम में और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लिखते हैं कि 31 मई 2026 को प्रातः 10 बजे शक्ति मंच के अंतर्गत पहला सुख निरोगी काया और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजेश जांगड़ा जी की प्रस्तुति में आयोजित कार्यक्रम फोन इन जो लाइव रहा, इस कार्यक्रम में महिला श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों और उनके निदान पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पहला सुख निरोगी काया विषय पर श्रोताओं के विचार प्राप्त किए गए। साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में अत्यंत सफल रहा। अब हम इसका उत्तर देना चाहेंगे आपको कि आपने राजेश जांगड़ा जी की सराहना की है, जिन्होंने की 31 मई 2026 को 10 बजे जो शक्ति मंच कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, यानी पिछले रविवार के आप जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो मानना होगा कि राजेश जांगड़ा जी जो कि अपने क्षेत्र में पूरी महारत रखती हैं और शक्ति मंच जैसा कार्यक्रम हो तो उसमें उनकी जो भागीदारी रहती है और उनकी जो प्रस्तुति रहती है वो वाकई ही लाजवाब रहती है। साथ ही जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जी हाँ उस दिन इस पर भी जो खास कार्यक्रम दिया गया उसकी आपने सराहना लिख भेजी है। तो देखिए ना, जागरूकता जो है वो बेहद ज़रूरी है। अब कार्यक्रम
रेडियो के जरिए अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो जन जन

को आगाह करने के लिए ये एक इनिशिएटिव ही कहेंगे कि भाई विश्व तंबाकू दिवस जैसा जो मनाया जा रहा है दिन के विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिस दिन की ये सभी के मन में ये भाव जागृत किया जाए कि तंबाकू जो रहता है उसके सेवन से बचना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन से कोई खिलवाड़ ना करें। और फ़ोन जो रहे लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रहा, उसमें महिला श्रोताओं के साथ जिन्होंने संवाद स्थापित किया, राजेश जांगड़ा जी ने, उस सब की आपने बहुत सराहना की है। और देखिए, जब भी घर में कोई इस तरीके की समस्याएं होती हैं तो महिलाओं को उससे ज़्यादा दो चार होना पड़ता है, तो वो तो अगर फ़ोन इन कार्यक्रम उन्होंने इस विषय पर उसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराई है, तो वो सच में अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर पाई होंगी। और पहला सुख निरोगी काया, जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी किस्म का सुख अगर इंसान लेना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम तो अपने शरीर को निरोगी रखना चाहिए। जब निरोगी शरीर होगा तभी तो बढ़ चढ़ करके किसी काम को किया जा सकता है। पढ़ाई करनी हो तो शरीर चाहिए, खेल कूदना है तो भी शरीर चाहिए, और अच्छा खाना चाहते हैं तो भी आपको शरीर चाहिए। नाचना कूदना, जो कुछ भी आप दुनिया में करना चाहते हैं, इस जगत में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। और जब ये शरीर का अस्तित्व है तो इसको तभी आप दुनिया के सभी सुखों को भोग सकते हैं। तो जिम्मेदारी है हम सभी की कि भाई अपने शरीर को तो कम से कम हम इतना वक्त तो दें कि हाँ, हम एक निरोगी काया में वास कर पाए हमारी आत्मा। तो और जो आपका ये अगला आगे आप लिखते हैं कि दिनांक 31/5/2026 यानी लास्ट संडे की ही आप बात कर रहे हैं, उसमें हेलो एफएम में विपिन सहगल जी की प्रस्तुति सुनने का अवसर मिला। कार्यक्रम के माध्यम से नए श्रोताओं से जुड़ने और उनके बारे में जानने का अवसर मिला, जो कि सराहनीय है। हालांकि कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए प्रस्तुति शैली में कुछ नवीनता लाई जा सकती है। उनकी प्रस्तुति में हमेशा एक जैसी ही बातचीत व शब्दों का दोहराव महसूस किया जा रहा है। श्रोताओं से बातचीत के दौरान नए शब्द, विविध प्रश्नों और अलग अंदाज के अभिव्यक्तियों का प्रयोग कार्यक्रम की आकर्षण क्षमता को और बढ़ा सकता है। जी हाँ, जिस और आप इंगित कर रहे हैं अपनी भावनाएं, वो हम समझ रहे हैं कि जो गत रविवार को आपने कार्यक्रम सुना रात को हेलो एफएम 10 बजे, उसमें विपिन सहगल जी की प्रस्तुति थी, तो हम अपने जो प्रस्तुतकर्ता साथी हैं उनको इस चीज़ की और ज़रूर इशारा करेंगे कि थोड़ा सा वो अपने प्रस्तुतिकरण में बदलाव लाएं, ताकि कार्यक्रम में और अधिक नवीनता और उनकी जो शैली रहे वो रोचक बनी रहे, ताकि जो हमारे श्रोता बंधु हैं उनका रुझान इस कार्यक्रम के प्रति बना रहे। वैसे तो इस कार्यक्रम का सभी को बेहद इंतज़ार रहता है। दिन में हम नमस्ते कुरुक्षेत्र तो देते हैं कार्यक्रम, वो भी हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है, लेकिन संडे का जो कार्यक्रम रहता है रविवार का, उसके लिए शायद हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता साथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। और प्रस्तुति की बात आपने जो कही है, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस चीज़ के लिए बतलाया जाएगा, शेयर की जाएगी उनसे, ये बात साझा की जाएगी कि भाई थोड़ा सा वो नवीनता ले लाने की कोशिश करें शब्दों के दोहराव से। जी हाँ, अगर प्रस्तुत करता है तो थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जब लाइव चल रहा है प्रोग्राम, सजीव फोन प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो कई बार हमारे जो श्रोता उधर से दूसरी ओर से बोल रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार के उत्तर वो दे रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हमें अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिए, नवीनता लाने के लिए तो अग्रसर ज़रूर रहना चाहिए, इस ओर ज़रूर प्रयास हमें करते रहना चाहिए। वहीं आपने लिखा आगे कि 1 जून 2026 को आपके यहाँ से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे में अनुराधा जी की प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली रही। कार्यक्रम में विश्व अभिभावक दिवस के अवसर पर अभिभावकों और बच्चों के पारस्परिक दायित्वों का पर सारगर्भित चर्चा की गई, जिसे फिल्मी गीतों के माध्यम से रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही विश्व दुग्ध दिवस पर दूध के महत्व, भारत के डेयरी उद्योग और भविष्य की संभावनाओं पर उपयोगी जानकारी साझा की गई। समग्र रूप से कार्यक्रम शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और अत्यंत सफल रहा। अनुराधा जी को उत्कृष्ट प्रस्तुति हेतु हार्दिक बधाई। तो देखिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम। अनुराधा ज़रूर इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ही हमें बताया कि शाम का जो ट्रांसमिशन रहता है उसमें मंगलवार को जो हमारे अक्सर प्रस्तुतकर्ता साथी हैं वो सभी इंतज़ार करते हैं, जैसे हमारे श्रोता साथी इंतज़ार करते हैं इस कार्यक्रम का, तो हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी भी सुनना चाहते हैं अपने बारे में कि कहीं हमारे लिए कोई टीका टिप्पणी या कोई संदेश या कोई हमारे बारे में अगर कुछ भी जिक्र हो रहा है। तो अनुराधा जी सुन करके ज़रूर गदगद हो रही होंगी कि हमारी तो तारीफ आई है,
तो अच्छा लगता है सभी को ये सब, और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपने लिखा है कि कार्यक्रम 2 जून यानी आज सुबह की बात आप कर रहे हैं, सुबह सवेरे कार्यक्रम की दीपा पाठक जी की प्रस्तुति अपेक्षित स्तर की नहीं लगी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां और प्रस्तुति में प्रवाह और प्रवाह का अभाव स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। प्रश्नों के उत्तर देने वाले अधिकांश श्रोताओं के नाम केवल उनके राज्यों के साथ बताए गए, जबकि उनके गांव तथा शहर का उल्लेख नहीं किया गया। आकाशवाणी जैसे प्रतिष्ठित मंच से श्रोता उच्च गुणवत्ता की अपेक्षा रखते हैं। अनुरोध है कि भविष्य में प्रस्तुतकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा ताकि कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनी रहे। जी हाँ, आपने जिस ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं, और साथ ही दीपा पाठक जी को जो उनका ये प्रस्तुतिकरण रहा उसके लिए ज़रूर संदेश भेजा जाएगा। उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं उस सब के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आगे इस तरीके की गलती हमारे कोई साथी ना करें, ऐसा हम आपको कोशिश करेंगे कि ना हो ऐसा महसूस। और क्योंकि रेडियो सुनकर के बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत बड़ा एक जनवर्ग है जो कि सिर्फ रेडियो पर ही निर्भर है, जो कि अगर हमारे यहाँ से गलतियाँ होंगी तो शायद फिर भाषा का जो है वो सही से उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब। और रेडियो से जो हम बोलते हैं उस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो एक बड़ा जनवर्ग जो है वो निर्भर करता है, उनों के ज्ञान में इजाफा होना या जो गलतियाँ यहाँ से हो रही हैं तो वो गलत ही सीखेंगे। जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो अगर रेडियो सुनते हैं कोई, क्योंकि अगर घर में चलता है तो बच्चों के कानों में जाता ही है, तो यहाँ ये जो बात है इस चीज़ का तो ज़रूर हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। और रही बात कि गाँव और शहरों का उल्लेख नहीं किया गया, तो जी हाँ, अगर जो भी एड्रेस है, जो भी आप पता लिख कर भेजते हैं वो तो हमें पूरा पढ़ना ही चाहिए। और अपेक्षा आपकी बिल्कुल सही है कि उच्च स्तर पर अगर प्रतिष्ठित मंच से अगर बोला जा रहा है तो अपेक्षा बढ़ जाती है वहाँ पर। और आपने जो भी जिस और भी इंगित किया है उस सब का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। और आगे आप लिखते हैं कार्यक्रम बात को प्रस्तुत करने वाली यानी आपकी बात को प्रस्तुत करने वाले सभी प्रस्तुतकर्ताओं से अनुरोध है कि हमारे एक श्रोता जो कि अपनी बात को अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो आप उसका जवाब भी अंग्रेजी भाषा में ही दें, या आप अपने सभी श्रोताओं से आग्रह करें कि ये टिप्पणियाँ हिंदी में ही लिखें जिससे अधिकतम लोग उन्हें समझ सकें और कार्यक्रम की मूल भावना और भाषा का सौंदर्य बना रहे। देखिए, आपने जिस ओर इशारा किया है तो अगर वो श्रोता साथी अगर हमारे सुन रहे हैं तो उनसे हम भी यही आग्रह करेंगे कि आकाशवाणी जो है वो एक, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र जो है वो एक हिंदी का ही केंद्र है, यहाँ से हिंदी भाषा का ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अलग चीज़ है कि बोलते वक्त जब हम फ्लो में बोल रहे होते हैं तो एक आधा वर्ड, एक आधा शब्द जो है वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल हो जाता है जो कि चलन में है आजकल, तो थोड़ा सा भाषा जो है वो एक जीवित चीज़ है और उसको आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर हम दूसरी भाषा के जो इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं उस ओर हम भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि ये अंग्रेज़ी के जो ईमेल्स आती हैं उनको आप कृपया ना भेजें, क्योंकि जो बाकी हमारा श्रोता वर्ग है, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं, यहाँ पर सभी की बातों को एड्रेस किया जाता है, सभी की बातों को स्थान देने की हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो आग्रह हम भी यही करेंगे कि जो भी हमारे साथी हैं वो अपनी बातों को हिंदी में ही लिख करके भेजें, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसका कि हमें इस्तेमाल भरपूर रूप से करना चाहिए। हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं ख़ासतौर पर रेडियो पर, तो आग्रह है हमारा भी। इतने हम भी काफ़ी अरसे से यही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर वो इंग्लिश में आती है ईमेल तो पढ़नी पड़ती है, क्योंकि श्रोता हैं तो उनको भी नाराज़ तो नहीं किया जा सकता अगर वो अंग्रेज़ी के ज़रिए, भाषा जो है वो हमारे और आपके बीच में एटलीस्ट वो व्यवधान ना बने। तो आज भी वो ईमेल आया हुआ है और हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की, और आपके इतने लंबे ईमेल के लिए, और एक जो बहुत खुशी हुई हमें आज देखकर कि आपने लाल, हरा और काला ये रंग इस्तेमाल किए हैं और पीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो थोड़ा सा कागज़ में पढ़ने में दिक्कत होती है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखा उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आप थे हमारे सुधीर श्रोता, गाँव व डाकघर ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना। इतने लंबे ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमबद्ध तरीके से आपने दिन के साथ साथ अपना जो भी आपका डेली आप सुनते हैं उस सब के बारे में आपने जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं उन सब के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और अब वही अंग्रेजी वाली ईमेल आ गई है हमारे पास।
जो कि है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ये हैं संजीव कुमार, गांव खुखनी तहसील इंद्री करनाल से हैं और कहते हैं कि नियमित श्रोता हैं आप हमारे सुबह सवेरे कार्यक्रम के, लेकिन गत पिछले कुछ दिनों से जो कि एक समस्या ये फेस कर रहे हैं वो है कि जो भी इनके टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो आते तो हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं कुरुक्षेत्र केंद्र पर, तो अपने टाइम पर यानी कि 8:45 का जो निश्चित टाइम है उसके बाद में वो आते हैं। तो ये इशू जो है, ये समस्या जो है, इन्होंने इसको उठाया है और आपकी कंप्लेंट है, कंप्लेंट नंबर 198 और सुबह सवेरे, लेकिन आप आंसर नहीं भेज पा रहे हैं बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो देखिए एक जून यानी कल की आप बात कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन रहा वो आप नहीं सुन पाए और आप रोडवेज में थे उस वक्त में। तो देखिए ये तो इसमें तो आकाशवाणी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं सुन पाएंगे ढंग से तो आंसर कैसे करेंगे। तो साउंड का पोल्यूशन तो रहता ही है। हाँ जी हाँ, अगर आप रोडवेज में चल रहे हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो नॉइज़ पोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। और दीपा पाठक जी का था तो दिस जिसमें कि 90 आकाशवाणी के जो 90 वर्ष थे उन सब की जानकारी दी गई। आपके जो यहाँ से मैसेजेस नहीं पहुँच रहे हैं उसके लिए हम ज़रूर इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे, लेकिन ये तो कुछ आपके टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उनका कुछ रहेगा ना इसमें। अगर हमारे फ़ोन नंबर पर बाकी मैसेजेस आ रहे हैं तो आपका क्यों नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सब के साथ में एक ईमेल और है जो कि है कैप्टन श्यामलाल मीणा सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, जल्दी से पढ़ देना चाहेंगे इसको। 28 मई और 1 जून को सुबह से मेरे कार्यक्रम अनुराधा जी द्वारा पेश किया गया, बिल्कुल भी अच्छी जानकारी नहीं लगी आपको। और 28 मई को वीर सावरकर जी की जयंती थी, जिक्र उस दिन के समाचारों में भी था लेकिन अनुराधा जी की तरफ से कोई जिक्र नहीं किया गया। और वहीं महबूब खान की पुण्यतिथि थी, उनका भी जिक्र नहीं था। और 1 जून के कार्यक्रम में अनुराधा जी द्वारा पेश किया गया गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन का भी कोई जिक्र नहीं था। देखिए आप हैं एक सुधीर श्रोता और आपने लिखा कि जो सुमन कल्याणपुर जी की डेथ हुई है अभी, उसके ऊपर निधन था, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, तो अनुराधा जी को इस चीज़ के लिए आगाह किया जाएगा। और साथ ही कोई जिक्र नहीं किया और बाकी केंद्रों पर उनके गीत सुनवाए गए, तो हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे कि हाँ एक दिग्गज कलाकार अगर दुनिया से गई हैं तो उनके लिए तो उनके हक का जो बनता है वो हमें ज़रूर उनको अदा करना चाहिए। और कोशिश करेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम रहेगा अगला उसमें हम आपको अनुराधा जी, वो माफ़ कीजिएगा, सुमन कल्याण जी, सुमन कल्याणपुर के बारे में जिक्र करेंगे और उन्हीं के गाए हुए गीतों की आज प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे। और जो आपने लिखा है उस सभी के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो इसलिए अगले हफ्ते फिर आपसे चाहेंगे कि आप अपनी ईमेल भेजें। और कैप्टन श्यामलाल मीणा जी सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं, तो हम सभी बातों को स्वीकार करते हैं आपकी, और आपके ईमेल को ठीक से जवाब ना देने पाने के लिए समय के अभाव के कारण ये जल्दी जल्दी हम पढ़ पाए हैं सिर्फ इसको। और जिस और भी आपने इशारा किया है उसके लिए अनुराधा जी को ज़रूर हम साझा करेंगे ये बातें, ताकि वो अपने कार्यक्रमों में आगे से गलतियाँ या जैसा भी हैं आपकी जो भी आप जो भी चाहते हैं कि भी ऐसा ऐसा होना चाहिए कार्यक्रम में, तो हाँ निश्चित तौर पर आकाशवाणी का केंद्र है तो भाई ये तो हमारी दायित्व बन जाता है कि भाई ऐसे में आप सभी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते साथ ही जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो ज़रूर शेयर की ही जाए। और इस सभी के साथ में चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात, जिसके लिए हम आपको अपना ईमेल एड्रेस बताए देते हैं। अगर आप भागीदारी चाहते हैं इस कार्यक्रम में तो आपकी बात akashvani@gmail.com इस पर आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। और ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है, रात्रि के 8:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म संगीत की उस मधुर और सादगीपूर्ण आवाज को जिसने दशकों तक अपने सुरों से लाखों दिलों को छुआ। जी हाँ, आज बातें इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ बातें और कुछ गीत, तो कुछ कुछ बातें होंगी, कुछ कुछ गीत होंगे, लेकिन होंगे किस पर, तो सुमन कल्याणपुर पर। यानी कि आज उस गायिका का जिक्र होगा जिनका जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और आज बांग्लादेश में स्थित है। उनका मूल नाम सुमन हेम्माड़ी था और उनके पिता शंकर राव हेम्माड़ी बैंक अधिकारी थे और परिवार बाद में मुंबई आकर बस गया। आज इन्हीं की बातें करेंगे और इन्हीं के सुनेंगे कुछ गीत। और इस कार्यक्रम को आपके साथ आज हम भी करेंगे थोड़ी सी शिरकत अपनी ओर से, और आपकी भी भागीदारी पूरी पूरी चाहेंगे, क्योंकि हमारे श्रोताओं की यही दरख्वास्त थी या यही एक चाहत थी कि सुमन कल्याणपुर, जिनका कि भारतीय सिनेमा जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको याद ज़रूर किया जाना चाहिए। तो ज्योतिषमा है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में, स्वीकार करें बहुत ही प्यारा सा नमस्कार और ये सुनिए ये गीत।

और दोस्तों, बात हो रही है आज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर की। सुमन जी, जिनका कि बचपन से ही संगीत और चित्रकला में बेहद खास रुझान था, उनकी रुचि इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस चीज़ में ही अपनी महारत हासिल करने की कोशिश की और संगीत में ही अपना करियर बनाया। उन्होंने मुंबई के सेंट कोलंबो स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में चित्रकला का अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भी ग्रहण की। वर्ष 1958 में उनका विवाह मुंबई के व्यवसायी रमणंद कल्याणपुर से हुआ, जिसके बाद से वह सुमन हेमाड़ी से सुमन कल्याणपुर बन गई। उनकी एक पुत्री चारुल है। अपनी विनम्रता, सादगी और मधुर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध सुमन कल्याणपुर ने जीवन भर संगीत को अपनी साधना माना और 31 मई यानी जो अभी 2026 की 31 मई रविवार को 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मधुर स्मृतियां और सुर सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगे। सुमन कल्याणपुर दोस्तों केवल एक गायिका नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक मधुर आत्मा थीं।

श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर का फिल्मी करियर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर में शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था, ये बात हम आपको बता चुके हैं, और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसने उनकी गायकी को एक मजबूत आधार दिया। उनकी प्रतिभा को सबसे पहले संगीतकारों और संगीत प्रेमियों ने स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में पहचाना। 1950 के दशक में सुमन कल्याणपुर को फिल्मों में गाने का अवसर मिला। उनका पहला महत्वपूर्ण गीत वर्ष 1954 में फिल्म दरवाजा के लिए माना जाता है। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटी फिल्में और सीमित अवसरों से संतोष करना पड़ा, क्योंकि उस समय पार्श्व गायन की दुनिया में लता मंगेशकर, गीता दत्त और आशा भोंसले जैसी महान गायिकाओं का दबदबा था, और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ बेहद कोमल, मधुर और सुरीली थी। धीरे धीरे संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़े बैनरों की फिल्मों में गाने का अवसर मिलने लगा। 1960 के दशक में उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। विशेष रूप से मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए गए उनके युगल गीत श्रोताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे। उनकी गायकी की दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता भावों की सहज अभिव्यक्ति थी। वे गीत के शब्दों को पूरी आत्मीयता से प्रस्तुत करती थीं और इसी गुण ने उन्हें हिंदी फिल्म संगीत में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। लगातार मेहनत, अनुशासन और संगीत के प्रति समर्पण के बल पर सुमन कल्याणपुर ने पार्श्व गायन की दुनिया में अपना अलग स्थान बनाया और भारतीय संगीत इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो दोस्तों, आज आपसे जिक्र हो रहा है पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का। भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में सुमन कल्याणपुर का नाम एक ऐसी गायिका के रूप में लिया जाता है जिनकी आवाज का साम्य महान गायिका लता मंगेशकर से अक्सर किया जाता था। उनकी आवाज इतनी मधुर, उतनी ही कोमल और सुरीली थी कि कई बार श्रोता यह पहचान ही नहीं पाते थे कि कोई गीत लता मंगेशकर ने गाया है या सुमन कल्याणपुर ने। 1960 और 1970 के दशक में सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए गए गीत बहुत सारे हैं, जिनमें अनेकों गीतों को लोग लंबे समय तक लता मंगेशकर की आवाज में गाया गीत समझते रहे, विशेष रूप से न तुम हमें जानो या तुमने पुकारा और हम चले आए, जो कि गीत हमने अपने कार्यक्रम के शुरू में चलाया, और ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, कुछ ऐसे गीत जिनके बारे में आज भी कई श्रोताओं को भ्रम हो जाता है। और इसका कारण दोनों गायिकाओं की आवाज की मिठास, स्पष्ट उच्चारण और भावपूर्ण प्रस्तुति में समानता। हालांकि सुमन कल्याणपुर ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी किसी की नकल करने का प्रयास नहीं किया, उनकी अपनी एक अलग शैली और पहचान थी। संगीत के जानकार बताते हैं कि ध्यान से सुनने पर सुमन जी की आवाज में एक विशिष्ट कोमलता और अलग स्वर रंग महसूस किया जा सकता है, और सुमन कल्याणपुर की ये जो प्रतिभा का ही प्रमाण है कि उनकी गायकी को लता मंगेशकर जैसी महान गायिका की गायकी के समकक्ष माना गया। उनकी मेहनत, साधना और मधुर आवाज के बल पर हिंदी फिल्म संगीत में एक विशिष्ट उन्होंने हासिल किया अपना स्थान, और आज भी उनके गीत सुनते समय श्रोता उनकी सुरीली आवाज के जादू में खो जाते हैं, और यही उनकी अमीर अमर संगीत की जो है वो विरासत है। और सुनते हैं ये अगला गीत।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: और दोस्तों, जब सुमन कल्याणपुर का जिक्र चल रहा है तो एक ऐसी गायिका की बात हम कर रहे हैं जो कि भारतीय फिल्म संगीत जगत की एक सम्मानित और लोकप्रिय पार्श्व गायिका मानी जाती है। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र, सरल और सौम्य रहा, जिसके कारण संगीत जगत के लगभग सभी गायक गायिकाओं और संगीतकारों के साथ उनके बेहद मधुर संबंध रहे। विशेष रूप से उनका नाम महान गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ लिया जाता है। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर ने अनेक यादगार युगल गीत गाए जो आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। दोनों कलाकार एक दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करते थे और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत आत्मीयता के साथ एक दूसरे के साथ काम करते थे। उनकी आवाज़ों का मेल इतना सुंदर था कि उनके कई गीत हिंदी फिल्म संगीत की धरोहर बन गए हैं। और ऐसा ही एक गीत अब हम आप सुनेंगे। सुमन जी के संबंध लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे महान कलाकारों के साथ भी सौहार्दपूर्ण ही रहे। यद्यपि उनकी आवाज़ की तुलना अक्सर लता मंगेशकर से की जाती थी, फिर भी उन्होंने कभी किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या कटुता को महत्व नहीं दिया। वे संगीत को साधना मानती थीं और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखती थीं। साथ ही संगीतकारों और सहकर्मियों के बीच सुमन कल्याणपुर अपनी सादगी, अपने अनुशासन और अपने सहयोगी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। और यही कारण है कि उन्हें केवल एक उत्कृष्ट गायिका ही नहीं बल्कि एक आदर्श और सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में भी याद किया जाता है। उनके संबंध, मधुर और विनम्र व्यवहार आज भी इसी बात के लिए वो अपने संगीत जगत में सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में जानी जाती हैं।

और दोस्तों, बहुत से ऐसे गीत हैं जो कि हम आपको सुनवाना चाहते हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अनुपालन तो करना ही पड़ेगा। और सुमन कल्याणपुर ने भारतीय फिल्म संगीत को बहुत सारे अमर और मधुर गीत दिए। जैसे 1950 से 1980 के दशक तक कई हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़, उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सैकड़ों गीत गाए। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी मधुरता, स्पष्टता, उच्चारण और भावों की सहज अभिव्यक्ति। फिल्म संगीत को समृद्ध बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया और अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। सुमन कल्याणपुर ने उस दौर में सफलता प्राप्त की जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में बड़ी बड़ी गायिकाओं का दबदबा था, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाई और एक विशेष स्थान हासिल किया जो कि आज भी है। उनके कई गीत आज भी रेडियो, टेलीविजन और संगीत मंचों पर अक्सर सुने जाते हैं और हम आपको वही आज कार्यक्रम सुनवा भी रहे हैं। उन्होंने अनेक फिल्मों जैसे कि बहुत ही नामचीन फिल्में ब्रह्मचारी, दिल एक मंदिर, बात एक रात की, राजकुमार, दिल ही तो है, शगुन, सूरज, साजन और प्यार किए जा जैसी फिल्मों में प्रमुख गीत गाए। और सुमन कल्याणपुर का सबसे बड़ा योगदान ये है दोस्तों कि भारतीय संगीत को ऐसे गीत दिए जो समय की सीमाओं को पार कर आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी मधुर आवाज आने वाली पीढ़ियों को भी संगीत की सुंदरता का एहसास कराती रहेगी। और अब एक सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत जो कि हम एक विशेष दिन बजाते हैं, लेकिन अब कुछ गीतों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कि छोटी छोटी झलकियां आपको उनके गीतों की सुनवाना चाहेंगे।

दोस्तों बहुत खूब कहा कि निगाहें ना फेरो चले जाएंगे हम। कभी सुमन कल्याणपुर जी ने अपनी मधुर आवाज़ में ये गीत गाया होगा और आज उनके जाने के बाद ये पंक्तियाँ और भी भावुक कर देती हैं। ऐसा लगता है कि दोस्तों की मानो अपने श्रोताओं से कह रही हूँ कि इस दुनिया से एक दिन वो विदा हो जाएंगी, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गीत, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज सुमन जी बेशक हमारे साथ शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनके सुर, उनकी मधुरता और उनकी गायकी सदैव जीवित रहेगी। उन्होंने भारतीय संगीत को जो अनमोल धरोहर दी है वो आगे आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी।

और दोस्तों, निगाहें ना फेरो, चले गए हैं वो, मगर उनके सुर आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। आवाज़ खामोश हुई है पर गीत अमर हैं। सुमन जी, आपको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और भारतीय संगीत जगत की जो मधुर स्वर कोकिला सुमन कल्याणपुर, आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत सदैव जीवित रहेंगे। उनकी सुरीली आवाज़, सादगी और संगीत साधना को हमारी भावभीनी ये श्रद्धांजलि। और इसी सब के साथ इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल

0: पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनाधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना किया करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। बोल गुलजार के थे संगीत आर डी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की।

0: नाम राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं

राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहाँ शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहाँ से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में। दीवान

राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर, वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सके। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु कर्मरकर। राधु कर्मरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने, इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हो, इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है।

अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आईं। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बावरे ने मुझे

ये छह की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है, लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं, और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थी।

अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की 3 फिल्में आईं, धुन, पापी और आह।

आह जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आह फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद उसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आह ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया शो मस्ट गो ऑन।

0: जाना। तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, स्वर शोध और आलेख अमरकांत का, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिष्मा की ओर से हाजिर हैं हम हर दिल अजीज कार्यक्रम चांदनी रातें लेकर, और स्वागत है हमारे तमाम सुनने वालों का। कार्यक्रम में हर रोज़ की तरह ढेरों सारी फरमाइशें पहुंची हैं और बहुत ही सारे मैसेजेस हैं। सभी को शुमार कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को हम शामिल कर पाएँ। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, जो कि पहला मैसेज हमारे नज़र में है वो है जलालाबाद शामली उत्तर प्रदेश से हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और सयान मंसूरी। अगला मैसेज है हमारे पास लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के हैं आप सभी श्रोता। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, राजीव वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। अगली फरमाइश हमें मिली है रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की ओर से, और आप सभी श्रोता हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। और संबलपुर कांकेर से फरमाइश पहुंची है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की ओर से। मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। अगले फरमाइशकर्ता श्रोता हैं आप सभी ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती के श्रोता हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे। अगले मैसेज में नज़र आ रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता दिनेश वर्मा और साथ हैं करुणा वर्मा, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत ऋषि, कृष्णा घोड़ के रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। नम्रता, खुशबू, खुशदिल, खुशदीप और परिवार के सभी सदस्य हैं चरखी दादरी हरियाणा से।

अगला मैसेज है हमारे पास संभाजी चौक सिडकुल न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास प्रीति, आशा गायकवाड़, दीपांजलि, दिशा बागमारे, शशांक बागमारे की ओर से। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं। आप सभी जिला खरगोन मध्य प्रदेश ग्राम बेहरामपुर टेमा से हैं। तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, यशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। और अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर विर्ग, जैतेक विर्ग और मीका विर्ग, गांधी चौक रोपड़, पंजाब से। अगली फरमाइश आई है गांव लसूड़िया, पाता तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं आप सभी श्रोता मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से हैं। विकास वनसोड़े, रेखा आदिति और वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। अगले श्रोता हैं हमारे पास आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ सायना और निवान शर्मा। अगली ख्वाहिश आई है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज शिंदे। और देखिए ये मैसेज पहले भी शामिल किया जा चुका है, तो अलग अलग नंबर से आप ऐसा ना करें। बांडीवाला फाजिलका से हैं क्रियांश बगड़िया, योगेश ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी। अगला मैसेज है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह। और आप सभी की फरमाइश पर पहला गीत कार्यक्रम में खुदगर्ज फिल्म से आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। राजेश रोशन का संगीत और गीत को लिखा है इंदिवर ने।

को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हमारे पास जिनके नाम पहुंचे हैं वो सभी हैं। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। अगला मैसेज है गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी की ओर से। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र के श्रोता हैं सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने और पीएस नुहाकर। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं निगम नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम रुबीना, आरिज नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी और पूनम कुमारी। कलेरा बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निगहत परवीन। अगला मैसेज हमें नजर आ रहा है दंतरीगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा।

आजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुकन्या, सुनैना और सविता भाकरे। अगला मैसेज है डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू की ओर से। पटेल नगर मलोट पंजाब के हैं आप सभी श्रोता। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी और तानिया नारंग। मजनू कटीला दिल्ली से ख्वाहिश पहुंची है कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा की ओर से। सतना मध्य प्रदेश के श्रोता हैं उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। अस्तुपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी। अगला मैसेज है तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा और आजमीन गुड़िया। गांव जगूड़ी जिला यमुनानगर से ख्वाहिश पहुंची है रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन की ओर से। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। अगला अनुरोध हमें मिला है मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर पंजाब के श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह और पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और अंजलि नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। आद ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, रही मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं आप सभी। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह, जोड़ा सिटी, दीवाना, पंखा रोड। जनकपुरी से पिंटी दीवाना, राजेंद्र सिंह ओब्रॉय की फरमाइश पहुंची है। जिला वरंगल से हैं मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और श्रृंकी शेखावत। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान के श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी वायशिमा। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज और अंशुमन, ओवी, सुभाष, सदानंद और नीरज, विराज। और आप सभी ने सुना चाहे बाजीगर फिल्म का गीत जिसमें आवाजें हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की। गौहर कानपुरी के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत।

रही अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसे सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने अपनी फरमाइश भेजी है। अगले फरमाइश करता श्रोता है बन्ने बुजुर्ग, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, सैयद मसूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन, कुमार हेड़ा सहारनपुर के हैं आप सभी श्रोता। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। नजफगढ़ जय विहार से हैं शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनाज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगरानी, बबीता मिगरानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू की फरमाइश पहुंची है। अगला मैसेज है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल और रचिता खुराना। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नुहाकर, निर्मला विशाल और सोपान ताइड़े, मलकापुर से नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर अपनी फरमाइश भेज रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी और तनुश्री गुप्ता, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, पिहरा बाजार झुमरी तलैया से हैं अभय कुमार, सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका साहू, रिया जिया, टुसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह और जयप्रकाश साव, बसंत लाल और हीरा मोती पन्ना लाल साव। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती, बबूरी बाजार चंदौली से हैं विजय और सरोज जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुमन और सुंदर जायसवाल। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। अगली फरमाइश हमें नजर आ रही है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र के श्रोताओं की, जिसमें हैं शामिल रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के श्रोता हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बाता परिवार, मुकेश बाता, नीलम बाता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और हार्दिक और साथ हैं वंश बाता। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशबद, राहुल और विजेंद्र जयजान। पद्मापुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा की फरमाइश पहुंची है। अगला मैसेज है गांव गाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयन बाबू की फरमाइश पहुंची है धनौरी तेलीवाला से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी को, फिल्म है द ट्रेन, आनंद बख्शी की शब्द रचना है और आर डी बर्मन का है संगीत।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से, और अगले गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी, और नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल बेबीसिया, और जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष और चंदन जाधव। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं गांव गोंदर करनाल से हैं किरणपाल, बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम,

रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। अगला मैसेज है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, सरिता सिद्धांत, प्रणीता, प्रिंस एकांश, अर्जुन और टुक टुक। अगले ख्वाहिश मन श्रोता हैं आप सभी मैसेड़वाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, नीना जी और स्वप्निल धाड़े। खुर्जा उत्तर प्रदेश से फरमाइश पहुंची है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा की ओर से। अब ये जो एक मैसेज आया है जिसमें सिर्फ गीत के बोल हैं लेकिन कोई नाम नहीं है, तो क्या ही बोला जाए। एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार काम्बोज की फरमाइश पहुंची है। गांव चौहलदा बागपत से है संजय नमन और अपार ढींगिया। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अब पंजाबी में एक मैसेज आया है तो माफ़ कीजिए, हमें पंजाबी पढ़नी नहीं आती है। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा, बेबी चाहत और सादिया। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन और आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी उस्मान अंसारी, कलीम, शमशुल कमर राही, यासीन हाशमी और आफ्ताब अंसारी, सहावर रोड गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश के हैं आप सभी श्रोता। कोरी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र के आप सभी श्रोता, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। अगला मैसेज है, देखिए ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं। गाँव सिली कला यमुनानगर हरियाणा से हैं जय सिंह काम्बोज, विजयंत सिंह काम्बोज, रिदम, निश्चय सिंह, जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरौड़ी। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन का गीत, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और असरानी की और साथ हैं ढेर सारे साथी। और गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जी, अरे कौन जी बोला जी?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से, आई थी वो धम से, गई छम छम छम। मन्नू

0: देख रहे एक ट्रक आ रहा
1: रोड मत बोल
0: आ नहीं जा रहा
2: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल
1: सिग्नल को तोड़ो बाग बड़ी सिंबल
2: देखो बेल बॉटम गालों पे डिंपल हल्का सा गालों पे है एक पिंपल
3: मनु भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया खोपड़ी की जेल में काले
0: कुंजी के तको तुरंग तक सुन सुन
2: हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम
3: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम
2: चौपाटी जाएंगे न भेलपुरी खाएंगे अच्छी अच्छी सूरतों से आके लड़ाएंगे हल्ला मचाएंगे हुल्ला मचाएंगे बैंड बाजा बाजे

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने पहुंचाई है। भावी निमगांव महाराष्ट्र से हैं श्री राम गोंधली, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। अगला मैसेज है हमारे पास, कुल स्वामिनी रेडियो क्लब श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से हीरा भाव बिड़वे, अनिकेत सोनवड़े, शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़वे। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टाउल और पीबी कुल थे। काला पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की फरमाइश पहुंची है। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साईगांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और देवेन जी की फरमाइश आई है। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता है नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली पंढरपुर से हैं जाकिर मुरानी, सुमैया सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और चाचा चाची और साथ ही है पूरा मुलानी परिवार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नामाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। थानेसर छोटा बाजार कुरुक्षेत्र से श्याम शर्मा, मिली, चिराग, राघव शर्मा, तनु शर्मा, पलक, मास्टर उद्देश्य। और अगला मैसेज है हमारे पास, ये मैसेज भी देखिए हम पहले शामिल कर चुके हैं, बाबा साहेब कंगणकर, खा साखरबाई परमेश्वर, रोहिणी।

मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर की ख्वाहिश पहुंची है। अगले श्रोता हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। पुलगांव निजामाबाद तेलंगाना के श्रोता हैं वाहिद रोमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, जुनैद जुबैर, मुकरम नोमान, फुरकान, जाकिर और फाजिल। अगला मैसेज है तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहारा पोपलघट माया चंद्रकला देवीदास और हरिभाव बिड़वे। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं चंद्रनगर सहारनपुर के श्रोता आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। लोगो कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार वर्खा, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगली फरमाइश है फाजिल का पंजाब भूषण खेड़ा से हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी खेड़ा, शालिनी, टिवानसी खेड़ा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई और हीरामणि शेंडर, प्रणय प्रसिद्धि का मैसेज पहुंचा है। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के श्रोता हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक। अगले मैसेज में नजर आ रहे हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। जिला लाल माता सुदामा नगर अतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के श्रोता हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन शोभा, कपिल, नैना और सत्यनारायण फुंगी भाई बागरी। अगले मैसेज को भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान चीपा और पूजा परिहार ने। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित प्रथमेश प्रणाली, सर्वत देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख का मैसेज है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। तहसील रोड गंजुंडवारा से हैं के अजराही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हम्माद जमील। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पमार, डैनी पमार और मैनीश पमार की फरमाइश आई है। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी को, फिल्म है उस्तादों के उस्ताद, असद भोपाली की शब्द रचना है, रवि का है संगीत।

और आइए सुनते हैं अब हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। पटियाली रोड गंजुडवारा से हैं खलील कुरैशी, नुसरत बेगम आजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। सनावत से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना की फरमाइश पहुंची है। अगले अनुरोध करता श्रोता हैं आप सभी। पांडर गवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे। बलहार शाह से हैं सूरज प्राची और एकलव्य लोंढे। ये मैसेज भी देखिए हम शामिल कर चुके हैं। मालियान सरधना मैस मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन। अब ये नाम तो भेजे नहीं आपने। अच्छा, अगला मैसेज है मानसी गौरव मदान मिनिस्ट्री रोड नई दिल्ली कीर्ति नगर से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास प्रीति गायकवाड़, आशा दीपांजलि गायकवाड़, दिशा बागमारे और शशांक बागमारे। अगले फरमाइश करता श्रोता हैं आप सभी। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज शिंदे, ऋषि और कृष्णा घोड़के। देखिए ये मैसेज पहले वैसे शामिल किया जा चुका है। गोविंदपुरा अब ये मैसेज भी देखिए आ चुका है। अब ये आप सभी वो मैसेजेस भेज रहे हैं जिनके नाम हम पहले ही कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। भटिंडा पंजाब से करणवीर हाउस भूजो कैंचिया से हैं प्रेम सिंह जौडा, मनजीत कौर जौडा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। और आप सभी की ख्वाहिश पर आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुर को। फिल्म है शगुन, गीतकार खयाम हैं और संगीतकार खयाम हैं और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

कार्यक्रम में अब आखिरी गीत सुनते हैं हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। अब देखिए हमें ढूंढना पड़ रहा है कि किसका मैसेज शामिल नहीं हुआ है। शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिराबाई और छकुली ताई खोबरखेड़े खांडवी बुढ़ाना से हैं दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े थिलोरी अमरावती से हैं सुनैना तनुज भोंडे और तनुज पवन भोंडे। अगले मैसेज में हैं निघत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार अपरकोट बुलंदशहर के हैं आप सभी श्रोता। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश पहुंची है नरसिंह राजपूत शत्रुघ्न सिंह गौरव सिंह जानवी राजपूत और दश राजपूत की ओर से। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर और साथ हैं करमजीत कौर। अब ये मैसेज भी देखिए हम शामिल कर चुके हैं। तो अगले गीत को जिस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी वो है फिल्म निकाह से और आवाज़ है गुलाम अली की। और आइए सुनते हैं इस गीत को।

इसी गजल को सुनना चाहा है। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने, लदावली, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से।

और इसी प्रस्तुति के साथ इजाजत चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया रेली की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के